0: পশ্চিমবঙ্গের উপকূলবর্তী অঞ্চলে নদী বা সমুদ্রে যারা মাছ ধরতে যান তাদের উদ্দেশ্যে এক সতর্কবার্তায় জানানো হয়েছে, সমুদ্র উত্তাল থাকার কারণে পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তর উড়িষ্যা সংলগ্ন উপকূল অঞ্চলে আজ 7 তারিখ মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। আকাশবাণী কলকাতা শুনছেন গীতাঞ্জলি প্রচার তরঙ্গের অনুষ্ঠান, একটু পরে সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গে সংবাদ।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে সরফিরোজি। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में कल शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंध सुदृढ़ कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा।

0: इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। श्री जयशंकर खाड़ी देशों की अपनी चार राष्ट्र की यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। यात्रा के अन्य चरण में कुवैत और ओमान भी शामिल हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के चमड़ा और जूता उद्योग का निर्यात लगभग 4.5 अरब डॉलर है। 38 विकसित देशों द्वारा मुक्त व्यापार समझौतों के कारण इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। नई दिल्ली में आयोजित चमड़ा निर्यात परिषद राष्ट्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार 2024-25 समारोह में श्री गोयल ने ये बात कही। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। चुनाव की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जाँच 15 जुलाई को होगी। इन सीटों के लिए मतदान 24 जुलाई को होगा और मतगणना भी उसी दिन होगी। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद पद से इस्तीफा दे दिया था। कल अयोध्या में बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
1: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अमेरिका के टेक्सास के डेलस शहर में स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हरा दिया। राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मुकाबले में सह मेजबान अमेरिका का सामना बेल्जियम से जारी है। इंग्लैंड, नॉर्वे, मोरक्को और फ्रांस क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा कर्नाटक में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Sarabjit Kaur. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta today. Mr. Modi arrived in Jakarta yesterday on a 3-day state visit at the invitation of Indonesian President. In a special gesture, President Prabowo personally received the Prime Minister at the airport. Indonesian Air Force fighter jets escorted the Prime Minister's aircraft after it entered Indonesian airspace. Describing the welcome as deeply touching, PM Modi said he looked forward to holding discussions with President Prabowo to impart fresh momentum to the India-Indonesia Comprehensive Strategic Partnership, which was established during his 2018 visit. Prime Minister Modi praised the rich cultural performances presented during his arrival in Jakarta, saying they reflected the deep civilizational, cultural and spiritual ties shared by India and Indonesia. The Prime Minister also appreciated a Bharatanatyam performance by the Samanvay Group

এখন শুনবেন ধারাবাহিক রামচরিতমানস। আজ শুনবেন 164তম পর্ব।

पिता के वचन की मर्यादा का पालन करने के लिए श्री राम को वन गमन करना था, किंतु सीता को वन जीवन के कष्ट भोगने देना राजा दशरथ को स्वीकार्य न था। अतः उन्होंने मंत्री सुमंत्र से ये कहा था, यदि दो चार दिनों में वन में घूम फिरकर राम वापस लौटने को तैयार न भी हों तो वो सीता को अवश्य लौटा लाएं। श्री राम ने कई प्रकार से सीता को अयोध्या वापस लौट जाने की सीख दी, किंतु सीता का एक ही उत्तर था, हे करुणामय और परम ज्ञानी, आप विचार कर देखें, शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे हो सकती है। मंत्री सुमंत्र से उन्होंने कहा, आप पिता और ससुर के समान मेरे हितैषी हैं, आपकी बात का खंडन करना मुझे शोभा नहीं देता, किंतु अत्यंत आर्त होकर मैं आपके सम्मुख आई हूँ। पति के चरण कमलों के अभाव में जगत के सभी नाते रिश्ते मेरे लिए व्यर्थ हैं।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में कल शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंध सुदृढ़ कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाए, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ 3rd भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि 3 देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर खाड़ी देशों की अपनी 4 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। यात्रा के अन्य चरण में कुवैत और ओमान भी शामिल हैं। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक के इस्तीफे के बाद खाली हुई थीं। चुनाव की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जांच 15 जुलाई को होगी। इन सीटों के लिए मतदान 24 जुलाई को होगा और मतगणना भी उसी दिन होगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। कल अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
1: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से ओडिशा के भुवनेश्वर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सुदृढ़ बनाने पर 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। कार्यशाला में लगभग 200 प्रतिभागी शामिल होंगे। इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय और वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान ट्राइब एक्स नामक एक डिजिटल शिक्षण मंच का भी शुभारंभ किया जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के चमड़ा और जूता उद्योग का निर्यात लगभग $4.5 अरब है। 38 विकसित देशों द्वारा मुक्त व्यापार समझौते के कारण इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। नई दिल्ली में आयोजित चमड़ा निर्यात परिषद राष्ट्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार 2024-25 समारोह में श्री गोयल ने यह बात कही। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अमरीका के टेक्सास के डलास शहर में स्पेन के पुर्तगाल को 1-0 से हरा दिया। राउंड ऑफ 16 के एक और अन्य मुकाबले में सह मेजबान अमेरिका का सामना बेल्जियम से हो रहा है। इंग्लैंड, नॉर्वे, मोरक्को और फ्रांस क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी। The news read by V.C. Pramod.

0: एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलने की उम्मीद। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों का पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम। मांगे पूरी नहीं होने पर 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की दी चेतावनी। भारत ने अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण सहित कुल 20 पदक जीते। और फुटबॉल में स्पेन और बेल्जियम फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। वार्ता के दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की जाएगी। दोनों नेता आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापनों के आदान प्रदान भी करेंगे।
3: प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10:30 बजे औपचारिक स्वागत समारोह से होगी। इसके बाद अतिथि पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के संसद परिसर में भी कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वे दोनों देशों के बीच संसदीय सहयोग के महत्व का उल्लेख करेंगे। वे एक सामुदायिक कार्यक्रम में भी भाग लेंगे, जहाँ श्री मोदी प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों से

0: बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान करने के लिए चर्चा करने के लिए उत्सुक हैं। इस साझेदारी की स्थापना उनकी 2018 की यात्रा के दौरान हुई थी। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी।
2: India and Indonesia are very close and strategic partners.
3: भारत और इंडोनेशिया बेहद करीबी और रणनीतिक साझेदार हैं। निकोबार द्वीप समूह में स्थित भारत का सबसे दक्षिणी छोर इंडोनेशिया के आचे से मात्र 160 किलोमीटर दूर है। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो की बेहद सफल यात्रा के बाद हमारे संबंध और भी मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा इसे और भी मजबूती देगी।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर चार खाड़ी देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। विदेश मंत्री ने शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं दी। डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन में प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। डॉक्टर जयशंकर कुवैत और ओमान भी जाएंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया है। नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2021 में स्थापित इस मंत्रालय ने सहकारिता तंत्र को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी आधारित और प्रतिस्पर्धी बनाया है। श्री शाह ने कहा कि सहकारिता विभाग ने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
4: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
1: मंत्रालय की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि 30 क्षेत्रों में फैली 85 लाख से अधिक सहकारी समितियों और 32 करोड़ सदस्यों को सम्मिलित करने वाला एक एकीकृत डिजिटल डेटाबेस बनाया गया है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि सरकार ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पैक्स की भूमिका का विस्तार किया है। इससे वे साझा सेवा केंद्रों के माध्यम से 300 से अधिक सेवाएं प्रदान कर सकेंगे।
4: आज पूरे देश के पैक्स एक ही बायलॉज के तहत काम कर रहे हैं। मॉडल बायलॉज को स्वीकार कर लिया, 300 गतिविधियों को 55,000 पैक्स के माध्यम से हम CSC की सेवाएं दे रहे हैं। 39,000 पैक्स किसान समृद्धि केंद्र बन चुके हैं। 700 पैक्स जन औषधि केंद्र बन चुके हैं। 75 पैक्स ने पेट्रोल और डीजल का खुदरा आउटलेट किया है और 300 पैक्स गैस के वितरण में लग गए हैं और लगभग 150 पैक्स जल आपूर्ति योजना का मेंटेनेंस का भी काम कर रहे हैं।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
5: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार

0: साथ में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर पीओके में बढ़ती राजनीतिक उथल-पुथल के बीच जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। कमेटी ने एक औपचारिक घोषणा में कहा कि उनका मौजूदा धरना प्रदर्शन तब तक अनिश्चित काल तक जारी रहेगा जब तक कि उनकी सभी मांगे पूरी नहीं की जाती। कमेटी ने पीओके के निवासियों और कश्मीरी प्रवासी समुदाय के सदस्यों से 9 जुलाई को होने वाले विरोध प्रदर्शन में भाग लेने का आह्वान किया है। भारतीय नौसेना शनिवार को विशाखापट्टनम में अपने छठे स्वदेशी प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी F-38 का जलावतरण करेगी। एक रिपोर्ट।
1: रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस स्टील्थ फ्रिगेट को भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा आंतरिक रूप से डिजाइन किया गया है। इस जहाज का नाम पूर्वी घाट की भव्य महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। मंत्रालय ने कहा कि यह जहाज लचीलेपन, शक्ति और अटूट संकल्प का प्रतीक है। महेंद्रगिरी जहाज अब एक विशिष्ट विरासत बनने और भारत के समुद्री इतिहास में एक और गौरवशाली अध्याय जोड़ने के लिए तैयार है। यह जहाज आधुनिक संयुक्त डीजल या गैस प्रणोदन प्रणाली से संचालित है। यह इसे समुद्री अभियानों के पूरे स्पेक्ट्रम में असाधारण मजबूती के साथ उच्च गति संचालन करने में सक्षम बनाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से ओडिशा के भुवनेश्वर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सुदृढ़ बनाने पर 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: इस कार्यशाला में लगभग 200 प्रतिभागी भाग लेंगे। इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय और वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान ट्राइब एक्स नामक एक डिजिटल शिक्षण मंच का भी शुभारंभ किया जाएगा। यह मंच जनजातीय कला, संस्कृति, भाषाओं और पारंपरिक ज्ञान और कौशल विकास को समर्पित होगा। कार्यशाला का उद्देश्य देश भर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के कामकाज की समीक्षा करना और उन्हें जीवंत ज्ञान संस्थानों, सांस्कृतिक संसाधन केंद्रों और जनजातीय विकास के लिए नीतिगत सहायता केंद्रों में परिवर्तित करने के लिए एक व्यापक कार्यसूची विकसित करना है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: जम्मू कश्मीर सरकार ने जानलेवा बीमारियों से जूझ रहे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत देने के लिए निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि CDF योजना के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। नई व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक विधायक अपने CDF से 20 लाख रुपए तक की राशि उपलब्ध करा सकेगा। ये सहायता गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों और अन्य अधिसूचित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मरीजों को दी जाएंगी। और अब खेल खबरें। थाईलैंड के पटाया में आयोजित अंडर-20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 20 पदक जीते हैं। महिला वर्ग में भारत 184 अंक के साथ उपविजेता रहा, जबकि पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग में भारतीय टीम 152 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रही। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का तीसरा मुकाबला आज रात नॉटिंघम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम श्रृंखला में पहली जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी। और बात फीफा फुटबॉल विश्व कप की। फुटबॉल में बेल्जियम ने सिएटल में चल रहे फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। बेल्जियम अब शुक्रवार को लॉस एंजल्स स्टेडियम में क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना करेगा। इससे पहले स्पेन ने कल रात डलास स्टेडियम में राउंड ऑफ 16 मुकाबले में पुर्तगाल को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मैच में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सर फिरोजी।
1: धन्यवाद विशाल। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्ट के महासचिव और सदस्य के इस्तीफे आज के सभी अखबारों की पहली बड़ी खबर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, चंपत राय और अनिल मिश्र को कामकाज से विश्राम, इस्तीफे मंजूर। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, राम ट्रस्ट कृष्ण भरोसे, पूर्व आईएफएस अधिकारी कृष्ण मोहन बनाए गए अंतरिम महासचिव। दैनिक जागरण ने एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्र दोषी, चंपत राय का नाम गायब। घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे, भ्रष्टाचारियों से वसूलेंगे पाई पाई, गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान अमर उजाला में है। कोलकाता में एक कार्यक्रम में गृहमंत्री ने कहा, घुसपैठियों की पहचान कर वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहलगाम आतंकी हमले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने हाफिज सईद को बनाया आरोपी। देशबंधु के अनुसार पूरक आरोप पत्र में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्करे तैयबा के सरगना पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने और आतंकी साजिश रचने का आरोप। नीट पीजी परीक्षा के पैटर्न में फेरबदल की खबर हिंदुस्तान में है। 30 अगस्त को कंप्यूटर बेस्ड मोड में आयोजित होगी परीक्षा, अब 200 की जगह 180 सवाल पूछे जाएंगे। बार बार यातायात नियमों के उल्लंघन पर निलंबित होगा ड्राइविंग लाइसेंस। दैनिक जागरण के अनुसार बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए सड़क परिवहन मंत्रालय की मोटर वाहन कानून में बदलाव की तैयारी।
0: धन्यवाद सर फिरोजी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलने की उम्मीद। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों का पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम। और फुटबॉल में स्पेन और बेल्जियम फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am VC Pramod, the headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta today to provide fresh momentum to comprehensive strategic partnership between the two countries. Home and Cooperation Minister Amit Shah says Cooperation Ministry infused new energy into lives of nearly 30 crore people over the past 5 years. Pakistan-occupied Kashmir protesters issue 48-hour ultimatum to Islamabad, warn of grand and final action on July 9th if demands are not met. India secure 20 medals including 4 gold at Under-20 Asian Wrestling Championships in Pattaya. And Spain book place in FIFA World Cup quarterfinals with a dramatic 1-0 victory over Portugal. Belgium beat US 4-1 to enter the quarterfinals. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta today. Mr. Modi arrived in Jakarta yesterday on a 3-day state visit at the invitation of Indonesian President. In a special gesture, President Prabowo personally received the Prime Minister at the airport. Indonesian Air Force fighter jets escorted the Prime Minister's aircraft after it entered Indonesian airspace. More from our correspondent.
3: Describing the welcome as deeply touching, Prime Minister Modi said he looked forward to holding discussion with President Prabowo to impart fresh momentum to the India-Indonesia Comprehensive Strategic Partnership, which was established during his 2018 visit. Prime Minister Modi praised the rich cultural performances presented during his arrival in Jakarta, saying they reflected the deep civilizational, cultural and spiritual ties shared by India and Indonesia. The Prime Minister also appreciated a Bharatnatyam performance by summoned via group comprising Indonesian students. The Prime Minister witnessed a series of performances. These include Indonesia's iconic Wayang Kulit shadow puppetry depicting the Ramayana, a Bharatanatyam recital by Indonesian students, and a devotional Buddhist dance paying homage to the triple gem, Sri Ratna. Expressing gratitude to the Indian community, the

मीडियन बीप 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता का चैनल संजय दास स्टूडियो की घड़ी में समय हो गया 9:10 और 53 सेकंड और मैं पापिया हाजिर हो गई हूँ लेकर हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसधारा। तो नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना प्रिय कार्यक्रम रसधारा। मैं आपकी दोस्त, आपके हम सफर, और अगले कुछ पलों तक हम बात करेंगे उस रिश्ते की जो बिना कुछ कहे हमें जीवन देता है, उस साए की जो कभी शिकायत नहीं करता, उस साथी की जो धूप खुद सहता है और ठंडक हमें देता है। जी हाँ, आज का विषय है पेड़ के 100 फायदे एक पेड़ माँ के नाम। कहते हैं दुनिया में अगर किसी का प्यार सबसे निस्वार्थ होता है तो वो माँ का होता है। जरा सोचिए, एक पेड़ भी बिल्कुल माँ की तरह होता है। खुद तपती धूप में खड़ा रहता है लेकिन अपने नीचे खड़े हर इंसान को छांव देता। खुद बारिश, आंधी और तूफान सहता लेकिन अपने सहारे बने घोंसले को बचाए रखता। उसके फल कोई और खाता, उसकी लकड़ी कोई और इस्तेमाल करता, फिर भी वो कभी शिकायत नहीं करता। इसलिए आज जब पूरे देश में एक पेड़ माँ के नाम का संदेश दिया जा रहा है तो ये केवल पौधा लगाने की बात नहीं है बल्कि उस ममता को प्रणाम करने की बात भी है जिसने हमें जीवन दिया।

दोस्तों, हमारी हिंदी फिल्मों ने भी पेड़ों को सिर्फ एक पृष्ठभूमि नहीं माना। कभी प्रेम की पहली मुलाकात पेड़ों की छांव में हुई, कभी बिछड़ने का दर्द किसी सूखे पेड़ ने महसूस किया, तो कभी बारिश में भीगे पेड़ों के बीच जन्मी धुनें आज भी दिल में बसी हुई हैं। जरा याद कीजिए, कितनी ही फिल्मों में नायक नायिका पेड़ों के इर्द गिर्द अपने सपने बुनते दिखाई देते हैं। आम के बाग, पहाड़ों के देवदार और बरगद की विशाल छांव, प्रकृति के बिना बॉलीवुड की कल्पना ही अधूरी लगती है। हमारे गीतों में हवा का जिक्र है, पत्तों की सरसराहट है, फूलों की खुशबू है और पेड़ों की हरियाली। शायद इसीलिए वो गीत आज भी ताजा लगते हैं। और अब इस खूबसूरत एहसास के साथ सुनते हैं आज का हमारा अगला गीत, जो हमें प्रकृति की गोद की ओर ले जाता हो।

दोस्तों, ये गीत सुनकर मन में जैसे थोड़ा हरा भरा सा एक भाव आ गया। यही तो प्रकृति का जादू है। आज विज्ञान भी कहता है कि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, तापमान कम करते हैं, वर्षा को के चक्र को संतुलित रखते हैं और पक्षियों का घर बनते हैं। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने तो ये बात बहुत पहले समझ ली थी। तभी तो गांव में पीपल, बरगद, नीम और आम के पेड़ों को परिवार का हिस्सा माना जाता था। एक समय था जब हर घर के आंगन में एक पेड़ जरूर होता था। बच्चे उसी की डाल पर झूला झूलते थे, दादी उसी की छांव में कहानियां सुनाती थी, गर्मियों की दोपहर उसी के नीचे कटती थी। आज इमारतें ऊंची हो गई है लेकिन आंगन छोटे हो गए हैं। शायद इसी वजह से दिल भी थोड़ा छोटा पड़ जाता है।

माँ की गोद और पेड़ की छांव दोनों में एक अजीब सी शांति होती है। जब इंसान परेशान होता है तो माँ के पास बैठकर सुकून मिलता है, और जब मन बहुत भारी हो तो किसी पेड़ के नीचे बैठकर भी राहत महसूस होती है। शायद इसलिए प्रकृति को भी धरती माँ कहा जाता है। हमारी फिल्मों में भी माँ और प्रकृति का रिश्ता बार बार दिखाई देता है। जब भी कोई भावुक दृश्य आता है, कैमरा अक्सर खुले आसमान, पेड़ों या बहती नदी की ओर चला जाता है, जैसे प्रकृति इंसान के हर दुख सुख की गवाह हो। एक शायर ने बहुत सुंदर कहा था, जो पेड़ धूप में जलकर भी छांव बांट रहा है, जो पेड़ धूप में जलकर भी छांव बांटता रहा, वही दुनिया की जीने की असली हुनर सिखाता रहा। दोस्तों, पेड़ कभी अपनी जरूरत नहीं बताते, वे चुपचाप खड़े रहते हैं, लेकिन अगर एक दिन वे न रहे तो हमें हर सांस उनकी कमी महसूस होगी।

सच, अगर आज आप अपनी माँ से सचमुच प्यार करते हैं तो उन्हें सिर्फ फूल मत दीजिए, उनके नाम एक पौधा लगाइए। जब वो पौधा बड़ा होगा तो हर नई पत्ती आपकी माँ की दुआ जैसे लगेगी। कहते हैं इंसान की पहचान उसके छोड़े हुए धन से नहीं बल्कि उसके किए हुए अच्छे कर्मों से होती है। सोचिए अगर आपके लगाए हुए पेड़ की छांव में कोई अनजान मुसाफिर आराम करे, कोई बच्चा फल खाए, कोई चिड़िया अपना घोंसला बनाए, तो उससे बड़ी विरासत और क्या होगी। बॉलीवुड में प्रकृति पर फिल्माए गए गीत आज भी इसलिए अमर है क्योंकि उनमें बनावट नहीं, सच्चाई थी। कैमरा जब पहाड़ों, जंगलों और पेड़ों के बीच जाता था तो गीत भी खुलकर सांस लेते थे। शायद यही वजह है कि वो धुने आज भी नई पीढ़ी को उतनी ही अच्छी लगती है। तो चलिए वक्त है एक और खूबसूरत गीत का जो हमें फिर से प्रकृति की ओर जरूर ले चलेगा।

दोस्तों अक्सर लोग कहते हैं कि एक पेड़ लगाने से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन सोचिए अगर यही बात हर इंसान सोच ले तो कोई भी पेड़ नहीं लगेगा। बदलाव हमेशा एक छोटे कदम से शुरू होता है, एक बीज ही तो आगे चलकर विशाल बरगद बनता है। आज जब मौसम बदल रहे हैं, गर्मी हर साल नए रिकॉर्ड बना रही है, तब पेड़ लगाना केवल पर्यावरण या फिर सरकार का काम नहीं है बल्कि आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी है। और जिम्मेदारी की सबसे खूबसूरत रूप दिया है एक पेड़ माँ के नाम। माँ हमें जन्म देती है, पेड़ हमें जीवन देते हैं। एक हमें बोलना सिखाती है, दूसरा हमें सांस लेना सिखाता है।

जरा अपनी माँ का चेहरा याद कीजिए। कितनी बार उन्होंने अपनी इच्छाएं छोड़कर हमारी जरूरतें पूरी की होंगी। ठीक उसी तरह एक पेड़ भी अपने लिए कुछ नहीं रखता। फल देता है, फूल देता है, लकड़ी देता है, दवा देता है, हवा देता है, और बदले में केवल थोड़ी सी मिट्टी और थोड़ा सा पानी मांगता है। तो क्यों ना इस बार किसी जन्मदिन, किसी सालगिरह या किसी खास दिन पर एक पौधा लगाया जाए। तस्वीरें भी खींचेगी, यादें भी बनेगी, और आने वाले वर्षों में वो पेड़ आपकी कहानी भी सुनाएगा। इसी उम्मीद से कि हम सब मिलकर धरती को थोड़ा और हरा बनाएंगे, आज के कार्यक्रम से ऑलमोस्ट विदा लेने का वक्त आ चुका है। जाते जाते कुछ बातें और, पर उससे पहले सुन लेते हैं अगला गाना।

दुआ और पेड़ की छांव दोनों मिल जाए तो जीवन बन जाएगा। एक पौधा आज लगाइए, कल किसी की सांस बचाइए। नमस्कार, आप और अपनी धरती माँ का ख्याल रखिए। और हाँ, इस बार सिर्फ सोचिए मत, एक पेड़ जरूर लगाइए अपनी माँ के नाम। और इसी के साथ मैं पापिया भी लेती हूँ आप सभी से विदा। मिलती हूँ ठीक दोपहर के 12 बजे कार्यक्रम सुरभि के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। ही मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी कोलकाता का चैनल संचयता। थोड़ी देर में अगला कार्यक्रम।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो के साथ मुलाकात कर रहे हैं। इस वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की जाएगी। दोनों नेता आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री ने अतिथि पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी इंडोनेशिया के संसद परिसर में भी कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वे दोनों देशों के बीच संसदीय सहयोग के महत्व का उल्लेख करेंगे। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया है। नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2021 में स्थापित इस मंत्रालय ने सहकारिता तंत्र को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी आधारित और प्रतिस्पर्धी बना दिया है। श्री शाह ने कहा कि सहकारिता विभाग ने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
1: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्शरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
0: पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बढ़ती राजनीतिक उथल-पुथल के बीच जम्मू कश्मीर संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। कमेटी ने POJK के निवासियों और कश्मीरी प्रवासी समुदाय के सदस्यों से 9 जुलाई को होने वाले विरोध प्रदर्शन में भाग लेने का आह्वान किया है। पाकिस्तान द्वारा की जा रही कड़ी कार्रवाई और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 600 से अधिक नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं की व्यापक गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पाकिस्तानी बलों की बर्बरता रविवार को तेज हो गई। मुजफ्फराबाद के कई हिस्सों से गोलाबारी और झड़पों की खबरें आ रही हैं। जम्मू कश्मीर सरकार ने जानलेवा बीमारियों से जूझ रहे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत देने के लिए निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि CDF योजना के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। नई व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक विधायक अपने CDF से 20 लाख

सिटी से फर्स्ट पोजीशन के साथ बीए पास किया। आपकी हिंदी तख्लीक की बातें करें तो वो बेशुमार हैं, लेकिन इनका सबसे बड़ा शाहकार कहानी इसने कहा था 1915 में शाया हुई थी। इसे हिंदी अदब की पहली और बेहतरीन कहानियों में शुमार किया जाता है। इनकी दिगर कहानियों में सुखमय जीवन 1910 और बुद्ध का कांटा 1914 शामिल है। आप संस्कृत, पाली, प्राकृत, हिंदी, अंग्रेजी और फ्रांसीसी समेत मुतअद्दिद जुबानों पर अबूर रखते थे। इन्होंने मर्यादा और नागरी प्रचारनी पत्रिका जैसे अहम अदबी रसायल के अदारत भी की है। 1916 में मायो कॉलेज अजमेर में हेड पुजारी की हैसियत से नामजद किए गए थे। इसने कहा था कि 1960 में इसी नाम से उसने कहा था 1960 में इसी नाम से फिल्म प्रोड्यूसर बिमल रॉय ने फिल्म तैयार किया, जिसमें सुनील दत्त और नंदा ने काम भी किया था। ये था आज का वो आईना जिससे आप रूबरू हुए। मौजूद सामिन, इस वक्त आप समाप्त फरमा रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता की उर्दू पेशकश अंजुमन चैनल संचैता पर सरफराज के साथ। स्टूडियो घड़ी में सुबह के 10:20:50 हो रहे हैं और अब वक्त है खूबसूरत नगमों का। पेशा खिदमत है आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में बहू बेगम फिल्म का ये नगमा। मौसिकार रोशन और नगमा निगार साहिर लुधियानवी।

हम इंतज़ार करेंगे। दोस्तों, इंतज़ार तो ज़िंदगी का हिस्सा है, कभी अपनों का तो कभी उनके लिए जो कुछ ना होते हुए भी सब कुछ है। जी हाँ, तेरी खुशबू नहीं मिलती, तेरा लहजा नहीं मिलता, तेरी खुशबू नहीं मिलती, तेरा लहजा नहीं मिलता, हमें तो शहर में कोई तेरे जैसा नहीं मिलता। जी हाँ दोस्तों, स्टूडियो के घड़ी में सुबह के 10:25 हो रहे हैं और नगमों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में लैला मजनू फिल्म का ये नगमा। बोल लिखे हैं साहिल लुधियानवी, जबकि मौसीकी है मदन मोहन और जयदेव का।

दोस्तों, प्यार को जो इबादत के तौर पर करते हैं उसके साथ जानते हैं कौन होता है? यकीनी तौर पर उसके साथ रब होता है, क्योंकि सच्चा आशिक हो या सच्चा प्यार करने वाला, वो हमेशा ही एक पाक व ताहिर प्यार करना चाहता है, और ऐसे में खुदा की मर्ज़ी यही होती है कि वो एक दूसरे से मिल लें। कहते हैं कि जिन आँखों ने देखे हों तेरे ख्वाब हमेशा, ऐ दोस्त उन आँखों को रुलाया नहीं करते। दोस्तों, खूबसूरत नगमों का यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है मंजरनामे का। दोस्तों, आज के मंजरनामे में उर्दू के बड़े अदीब व नक्काद गोपी चंद नारंग और तनकीद की नई जहत के ताल्लुक से चंद बातें समाप्त फरमाएंगे। दोस्तों, गोपी चंद नारंग उर्दू तनकीद में असलूबियात और साख्तियात के अवलीन और नुमाया तरीन मेमार थे। इनके कुतुब में उर्दू तनकीद को रवायती और तासराती हदूद से निकाल कर साइंसी और लसानी बुनियादों पर इस्तवार किया। उर्दू तनकीदों में इनके ज़रिया लाई गई नई जहतों की तफसीलात की बात करें तो बात इनको असलूबियात की होगी, इनके असलूबियात की होगी। इन्होंने मतन के अंदरूनी साख्त और ज़ुबान की फ़नी खूबियों को तनकीद का मरकज़ बनाया है। यह रवायती सवाने या तारीख़ी तनकीद से बिल्कुल मुख्तलिफ एक साइंसी तरीक़ाकार था। नारंग ने मगरबी अदबी नज़रियात को उर्दू में मुतारफ़ कराया। इन्होंने बताया कि मानी मतन के अंदर छुपे होते हैं और कारी के तफहीम के साथ बदलता रहता है। इन्होंने मगरबी नज़रियात के अंधाधुन तकलीद के बजाय इन्हें हिंदुस्तानी या मशरकी शेरियात से हम आहंग किया था, ताकि उर्दू अदब की तहजीब की जड़ें मुस्तहकम हो सकें, और इन्होंने तनु की वकालत भी की थी। गैर मुस्लिम उर्दू लिखने वालों में प्रोफेसर गोपी चंद नारंग की शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं है। 11 फरवरी 1931 को पंजाब में पैदा होने वाले गैर मुस्लिम प्रोफेसर गोपी चंद नारंग को अहद हाजिर में सफ़े अव्वल का उर्दू नकाद, महक्किक और अदीब गर्दाना जाता है। बचपन क्वेटा में गुजरा और फिर 1954 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमए करके 1958 में लसानियात में पीएचडी की सनद हासिल की। इन्होंने 1957 में सैन स्टीफन कॉलेज दिल्ली में पढ़ाना शुरू किया और 1995 तक दिल्ली यूनिवर्सिटी

में प्रोफेसर के तौर पर तदरीसी खिदमात अंजाम देते रहे। गो वो हिंदुस्तान में रहते हैं लेकिन रहते थे लेकिन पाकिस्तान समेत दिगर ममालिक में इनकी इल्मियत को नहायत इज्जत व एहतराम की निगाहों से देखा जाता है। उर्दू महफिलों, जलसों और मुज़ाकरों में शिरकत के लिए वो पूरी दुनिया का सफ़र करते थे, इसलिए शायद इनको उर्दू का सफ़ीर भी कहा जाता था। मौसूफ़ को अपनी 64 तसानीफ़ात जिनमें 12 अंग्रेज़ी और 7 हिंदी पर है मबनी है, हिंदुस्तान में पद्म भूषण से नवाजा जा चुका है। वहीं पाकिस्तान व दिगर ममालिक में मुतअद्दिद इनामात और एजाजात से सरफराज किया गया था। उर्दू ज़बान व अदब में प्रोफेसर नारंग के खिदमात कसीरुल जहात हैं। वो ना सिर्फ एक महक्किक, मुफक्किर और मशहूर दानिश्वर थे बल्कि बेहतरीन और शोहरत याफ्ता नकाद भी थे। वो अब के बदलते रुझानात से बाखबर होने के साथ इनको अपनाने और इन पर अमल करने की कोशिश भी किया करते थे। तहरीक इनकी तबीयत का लाजमी जुज़ है, इसलिए वो कदीम व जदीद दोनों नस्लों को हर नए नज़रिए जदीद नज़रिए पर खुलकर बहस और मुबाहसे का मौका फराहम करते थे। यूँ तो गोपीचंद नारंग की मशहूर होने के कई वजूहात हैं लेकिन उर्दू ज़बान व अदब में इन्हें एक बुलंद पाया नकाद की हैसियत से जाना और पहचाना जाता है। उर्दू तनकीद के मैदान में उर्दू शायरी, उर्दू नसर, असलूबियात, साख्तियात और लसानियात के अलावा इनका पसंदीदा मौजू उर्दू अफसाने की तनकीद है। उर्दू तनकीद की तारीख पर नज़र डालें तो पता चलता है कि तनकीद का ताल्लुक ज़्यादातर शायरी से ही है। फिक्शन को हमेशा सानवी दर्जे हासिल रहा है। इलामात और इस्तारात को फ़न में बखूबी इस्तेमाल करना आसान नहीं है लेकिन जब इलामात और इस्तारात और इनके मानिंद दूसरे औजार किसी माहिर फ़नकार के हाथ लगते हैं तो वो इन इलामात और इस्तारात को अपनी फ़नकारी के लिए इस्तेमाल करके फ़न की खूबी में चार चांद लगा देते हैं। जब ऐसा नहीं होता तो कहानी और फ़न का चेहरा मसख हो जाता है और इसकी रूह दम तोड़ने लगती है। प्रोफेसर नारंग का ये मुख्तसर कहानी और इलामती और इस्तियारी अफसानों के मुतालिक बहुत सख्त है लेकिन बगौर देखा जाए तो वो पहले नकाद है जिन्होंने वाज़ह लफ्ज़ों में इन फ़नकारों और तख्लीकारों को तंबीह की जो फ़न अफसाना या कहानी को इलामत और इस्तियारे के नाम पर इस कदर गुंजलक और पेचीदा बना देते हैं कि बाज़ वक्त कई बार पढ़ने के बाद भी कहानी समझ से बालातर है। बसा अवकात ये भी होता है कि नाम नहाद इलामती कहानी के गिर्द में असल इलामती तमसील कहानी ही कहीं गुम जाती है। कहानी और अफसाने में तमसीली अंदाज इख्तियार करना मशरक़ी मिजाज का लाजमी हिस्सा है। हमारी सदियों की रवायत रही है। वारिस अलवी के इस के बारे में कहा जाता है कि तमसीली कहानी अफसाना निगारी का शगल तरीक़ा है और इसका रद्द होना चाहिए। तो प्रोफेसर नारंग अफसानवी तनकीद शऊर का इजहार करते हुए मुदल्लल अंदाज में वारिस अलवी की मुखालफत करते हुए कहते हैं कि कदीम हिंदुस्तान की रवायत में पंचतंत्र, जातिक और हतोपदेश और शगाफ्ती वगैरह के अलावा इस्लामी रवायत में मसनवी, रूमी, मंतिक और तईर हिकायात वगैरह, इन सब का तमसीली अंदाज हमारे बयानिया का जुज़ व लानफिक है। इसलिए तमसीली अंदाज हरगिज़ सफल नहीं हो सकता क्योंकि इनके ज़रिया इलामती तकाजे पूरे होते हैं। प्रोफेसर गोपीचंद नारंग उर्दू अदब में फिक्शन की जिस खूबी, मियार और बुलंदी के कायल हैं इनके अलावा पेश नज़र किसी और तरह की नरमी नहीं बरतते। यही वजह है कि वो वारिस अलवी के इस तरह के बयानात को इन्होंने मगरबी अदब और मगरबी इलामत पसंदी से मरूब होता बताया है और फरमाया कि अगर वो अपनी सकाफ़ती वर्से इज्तमाही लाशऊर अदबी सरमाए की रवायत को नज़र में रखते तो इस तरह तमसीली अंदाज बयान को रद्द ना करते। 1985 में होने वाले एक सेमिनार में
इन्होंने कहा था कि

दोस्तों इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में सुबह 10:47 और 44 सेकंड हो रहे हैं और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता के उर्दू पेशकश अंजुमन सरफराज के साथ चैनल संचयता पर। और इसी के साथ एक और खूबसूरत सा नगमा आपके गुजार करना चाहूँगा, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म आराधना, नगमा निगार आनंद बख्शी, मौसीकार हैं SD बर्मन।

दिल की बस्ती में चिरागों सा उजाला हो तुम, मेरी खामोश दुआओं का हवाला हो तुम। दूसरे सिलसिला आइए पेशावराना ज़िंदगी के ताल्लुक से करते हैं चंद बातें। मौजूद सामिन, आज के दौड़ती भागती दुनिया में जो वक्त के साथ नहीं चल सका वो पीछे रह गया। असर हाजिर में सिर्फ तालीम ही काफ़ी नहीं, इसके साथ रोज़गार भी ज़रूरी है। और बात जब रोज़गार की होगी तो आप तरह तरह के पेशों को अख्तियार करके रोज़ी कमा सकते हैं। आकाशवाणी कोलकाता की ख़ास पेशकश रोज़गार के मौके में आज आप मसवरी के ताल्लुक से जानकारी हासिल करेंगे। मुजस्मा साजी को आप कैसे बतौर पेशा अख्तियार कर सकते हैं, आज के इस ख़ास प्रोग्राम में इन्हीं पर बातें। दोस्तों, मुजस्मा साजी से मुराद एक ऐसा मुजस्मा साज है जिसकी अहम तख्लीक

मीडियम बीप 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी कोलकाता का चैनल संचय दास स्टूडियो की घड़ी में समय हो गया है 12:47 का और मैं पापिया हाजिर हो गई हूँ लेकर हिंदी कार्यक्रम सुरभि। तो चलिए आज के दिन की यानी कि 7 जुलाई में कौन सा दिन मनाया जाता है बात करते हैं उसकी चर्चा है मैं। तो चर्चा है मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 7 जुलाई जिसको जिस दिन हम याद कर रहे हैं हिंदी साहित्य के एक ऐसे महान रचनाकार को जिन्होंने बहुत कम लिखा लेकिन जो लिखा वो अमर हो गया। हम बात कर रहे हैं पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जिनका जन्म 7 जुलाई 1883 को जयपुर में हुआ था। गुलेरी जी केवल एक साहित्यकार ही नहीं थे बल्कि संस्कृत हिंदी प्राकृत और इतिहास के गहरे विद्वान भी थे। उन्होंने अपने ज्ञान और लेखन से हिंदी साहित्य को नई ऊंचाइयां दी। जब भी हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानियों का जिक्र होता है उनकी अमर कहानी उसने कहा था का नाम सबसे पहले लिया जाता है। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित ये कहानी प्रेम त्याग वचन और कर्तव्य की एक ऐसी मिसाल पेश करती है जो आज भी पाठकों के मन को भावुक कर देती है। यही कारण है कि इसे हिंदी की कालजयी कहानियों में गिना जाता है। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने भले ही कम रचनाएं लिखी लेकिन उनकी लेखनी का प्रभाव इतना गहरा था कि उनका नाम हिंदी साहित्य के इतिहास में सदैव स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगा। आइए उनकी जयंती पर हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करें और उन्हें उनके साहित्य से प्रेरणा लेने का संकल्प भी लें। तो दोस्तों ये थी चर्चा है और चर्चा है में आज हमने याद किया पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी को। फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हुए सुनते हैं एक हिंदी फिल्मी गीत श्रेया घोषाल और शान की आवाज में।

तो दोस्त, इस खूबसूरत से गाने के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं और सुन लेते हैं पहल। आज पहल के अंतर्गत हम बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। नमस्कार श्रोताओं, घर ये केवल ईंट, सीमेंट और दीवारों का नाम नहीं। घर वो जगह है जहां सपने जन्म लेते हैं, जहां बच्चों की हंसी गूंजती है, जहां बुजुर्गों को सुरक्षा का एहसास होता है और जहां घर शाम हर शाम परिवार एक साथ बैठकर अपने दिन की बातें साझा करता है। लेकिन हमारे देश में लंबे समय तक ऐसे लाखों परिवार रहे जिनके पास अपना पक्का घर नहीं था। कोई किराए के छोटे से कमरे में रहता था, कोई कच्चे मकान में, तो कोई झुग्गी झोपड़ी में जीवन बिताने को मजबूर था। इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने ऐसी योजना शुरू की जिसने लाखों लोगों के अपने घर के सपने को नई उम्मीद दी। इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, जिसे हम PMAYU के नाम से भी जानते हैं। इस योजना की शुरुआत वर्ष 2015 में की गई थी। इसका उद्देश्य था कि शहरी क्षेत्रों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम आय वर्ग के पात्र परिवारों को सम्मानजनक और सुरक्षित आवास उपलब्ध कराया जाए। समय के साथ इस योजना ने लाखों परिवारों के जीवन में बदलाव लाए। इसी सफलता को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 की शुरुआत की। इसका लक्ष्य है आने वाले वर्षों में 1 करोड़ पात्र शहरी परिवारों को आवास सहायता उपलब्ध कराना। तो दोस्तों, घर का सपना हर व्यक्ति का सपना होता है। जब किसी परिवार के पास अपना घर होता है तो केवल रहने की जगह नहीं मिलती बल्कि बच्चों की पढ़ाई, महिलाओं की सुरक्षा, परिवार का स्वास्थ्य और सामाजिक सम्मान भी बढ़ता है। यही सोच इस योजना का मूल भाव है। अब सवाल यह है कि आखिर इस योजना का लाभ किन लोगों को मिल सकता है? यदि आप किसी शहरी क्षेत्र में रहते हैं, आपके परिवार के पास देश में कहीं भी पक्का घर नहीं है और आप सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता के अंतर्गत आते हैं, तो आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस योजना में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS, निम्न आय वर्ग यानी LIG और निर्धारित आय सीमा के अंतर्गत आने वाले अन्य पात्र परिवारों को भी शामिल किया गया है। योजना में पात्रता का निर्धारण परिवार की आय, आवास की स्थिति और अन्य सरकारी मानदंडों के

आधार पर किया जाता है। इस योजना की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये भी है कि महिलाओं को विशेष प्राथमिकता दी जाती है। कई मामलों में घर का स्वामित्व महिला के नाम या पति पत्नी के संयुक्त नाम पर रखने को प्रोत्साहित किया जाता है। इससे महिलाओं का आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण भी सुनिश्चित होता है। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 केवल घर बनाने की योजना नहीं है, बल्कि ये सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता का अभियान है। इस योजना के अंतर्गत अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार सहायता उपलब्ध कराई जाती है। यदि किसी परिवार के पास अपनी जमीन है और वो घर बनाना या पुराने कच्चे घर को पक्का करना चाहता है तो उसके लिए भी प्रावधान है। यदि कोई पात्र परिवार या नया घर खरीदना चाहता है तो उसके लिए भी कई तरह की सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है। इसके अलावा शहरी गरीबों के लिए सस्ते किराए की आवास व्यवस्था को भी बढ़ावा दिया जा सकता है, ताकि रोजगार की तलाश में शहर आने वाले लोगों को भी सम्मानजनक आवास मिल सके। यही कारण है कि आज प्रधानमंत्री आवास योजना केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों के जीवन में बदलाव का माध्यम बन चुकी है। अब बात करते हैं इस योजना के सबसे महत्वपूर्ण पहलू की। अक्सर लोगों के मन में ये सवाल होता है कि आखिर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत सहायता किस प्रकार की दी जाती है। सरकार ने अलग अलग जरूरतों के को ध्यान में रखते हुए इस योजना को कई घटकों में विभाजित किया है, ताकि हर पात्र परिवार अपनी परिस्थितियों के अनुसार लाभ प्राप्त कर सके। सबसे पहले बात करते हैं बेनिफिशियरी लैंड कंस्ट्रक्शन यानी BLC की। यदि किसी पात्र परिवार के पास अपनी जमीन है लेकिन आर्थिक तंगी के कारण वो घर नहीं बना पा रहा है या कच्चे घर को पक्का नहीं कर पा रहा है, तो सरकार आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती है। इससे परिवार अपने लिए सुरक्षित बेहतर आवास का निर्माण कर सकता है। दूसरा प्रावधान है इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम। यदि कोई पात्र परिवार बैंक या वित्तीय संस्था से होम लोन लेकर अपना पहला घर खरीदा बनाना या खरीद कर उसमें रहना चाहता है, तो सरकार निर्धारित पात्रता के अनुसार ब्याज पर सहायता उपलब्ध भी कराती है। इसी प्रकार सरकार की अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग यानी सस्ती किराए की आवास व्यवस्था को भी बढ़ावा दिया है। दोस्तों, इस योजना की सबसे अच्छी बात यह है कि इसका उद्देश्य केवल मकान बनाना नहीं, बल्कि रहने योग्य घर उपलब्ध कराना है। इसलिए आवास के साथ साथ स्वच्छ पेयजल, शौचालय, बिजली, सड़क और अन्य मूलभूत सुविधाओं पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि एक अच्छा घर तभी पूर्ण माना जाता है जब उसके आसपास आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध है। चलिए बात कर लेते हैं अब आवेदन प्रक्रिया की। यदि कोई व्यक्ति इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे ये सुनिश्चित करना होगा कि पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करता हो। इसके बाद आवेदन ऑनलाइन या संबंधित राज्य सरकार, नगर निगम, नगर पालिका अथवा अन्य नामित एजेंसियों के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदन करते समय आधार कार्ड, पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास संबंधी दस्तावेज, बैंक खाते का विवरण, मोबाइल नंबर और अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा भी करने होते हैं। यदि किसी श्रेणी में अतिरिक्त दस्तावेजों की आवश्यकता होती है तो संबंधित विभाग इसकी जानकारी भी उपलब्ध कराता है। और एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आवेदन हमेशा सरकारी पोर्टल या अधिकृत एजेंसी के माध्यम से ही करें। किसी भी अनजान व्यक्ति या एजेंट से को पैसे देकर आवेदन कराने की आवश्यकता नहीं होती। यदि कोई व्यक्ति योजना के नाम पर पैसे की मांग करता है या गलत जानकारी देकर लाभ दिलाने का दावा करता है तो उसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को अवश्य दें। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 को समझने के लिए ये जानना भी आवश्यक है कि सरकार ने अलग अलग परिस्थितियों में रहने वाले परिवारों की जरूरतों को भी ध्यान रखकर इस योजना को तैयार किया है। हर परिवार की स्थिति एक जैसी नहीं होती। किसी के पास जमीन है लेकिन घर बनाने के लिए पैसे नहीं, कोई किराए के मकान में रहता है तो कोई बैंक से ऋण लेकर अपना पहला घर खरीदना चाहता है। इसलिए योजना के अलग अलग प्रकार की सहायता का प्रावधान भी दिया गया है। तो दोस्तों, हर घर केवल एक पता नहीं होता, वो एक पहचान होता है, वो सुरक्षा का एहसास होता है, आत्मसम्मान का प्रतीक होता है और आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव भी। इसी विश्वास के साथ कि देश का हर पात्र परिवार सुरक्षित और सम्मानजनक आवास का अधिकार प्राप्त करे, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 आगे बढ़ रही है। आइए हम भी जागरूक बने, दूसरों को जागरूक करें और सरकार की जल कल्याणकारी योजना की सही जानकारी समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने में अपनी भूमिका

भूमिका निभाई। इसी संदेश के साथ अब हमें दीजिए अनुमति, फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और नई जानकारी के साथ। तो आप सुन रहे थे सुरभि के अंतर्गत पहल, जहां आज हम बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के बारे में। चलते चलते दोस्तों, चलिए अब सुन लेते हैं हिंदी फिल्मी गाने।

और इसी के साथ दोस्तों कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में पहुंच चुके हैं। इस गाने के साथ ही मैं पापिया भी लेती हूं आप सभी से विदा। मिलती हूं किसी और दिन किसी और समय कुछ और बात और गीतों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ ही हुई मीडियम बीट 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज़ पर। यह है आकाशवाणी कोलकाता का चैनल संचयिता।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के समझौते किए। प्रधानमंत्री ने

0: जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच 2018 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी प्रगति के नए चरण में प्रवेश कर रही है।
1: 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि बढ़ते आपसी विश्वास ने रक्षा, सुरक्षा और समुद्री क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत किया है और दोनों देश रक्षा आदान प्रदान, आपदा प्रबंधन सहयोग और औद्योगिक सहयोग का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI जल्द ही इंडोनेशिया की भुगतान प्रणाली के साथ एकीकृत किया जाएगा, जिससे व्यापार और यात्रा दोनों में सुगमता आएगी।
1: पीपल टू पीपल टाइज हमारे संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति है। हमें बहुत खुशी है कि भारत की UPI इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने जा रही है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ ट्रैवल दोनों को ही बल मिलेगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि वे कल योग्यकार्ता में राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ 1000 साल से अधिक पुराने प्रम्बानन मंदिर के संरक्षण परियोजना का शुभारंभ करेंगे, जिसे उन्होंने भारत और इंडोनेशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताया। उन्होंने घोषणा की कि दोनों देश गुरुदेव रवींद्र ठाकुर की इंडोनेशिया की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी को उत्साह के साथ मनाएंगे। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को इंडोनेशिया का बिंतांग आदिपूर्णा सम्मान से सम्मानित किया जाना सभी भारतीयों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि ये सम्मान भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करने और भारत आसियान संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी के निरंतर प्रयासों का प्रमाण है। भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की 2 दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया है कि केरलम के कोच्चि में कल से शुरू हो रही बैठक में विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और महिला नीत विकास जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार होगा। इस दौरान कई सत्र आयोजित किए जाएंगे ताकि महिलाओं की भागीदारी को मजबूती प्रदान की जा सके। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में संदिग्ध धनराशि के हेरफेर और अनियमित वित्तीय लेनदेन के मामले में आज कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर तलाशी ली। निदेशालय की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि 150 करोड़ रुपए से अधिक की भारी धनराशि संदिग्ध उद्देश्यों के लिए विमानन और यात्रा कंपनियों के माध्यम से भेजी गई है। गुजरात उच्च न्यायालय ने 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोटों के मामले में आज विशेष न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें 38 दोषियों को मौत की सजा और 11 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र में बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 132 अंक बढ़कर 78,417 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi held delegation-level talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta to review the full spectrum of bilateral ties and provide fresh momentum to the comprehensive strategic partnership between the two countries. The two leaders also witnessed the exchange of memoranda of understanding aimed at enhancing collaboration in areas of mutual interest. Speaking at a joint press conference with the Indonesian president,

0: Prabhu Vosubianto in Jakarta to review the full spectrum of bilateral ties and provide fresh momentum to the comprehensive strategic partnership between the two countries. The two leaders also witnessed the exchange of Memoranda of Understanding, MOUs, aimed at enhancing collaboration in areas of mutual interest. Speaking at a joint press conference with the Indonesian President in Jakarta, Mr. Modi said growing mutual trust has strengthened cooperation in defense, security and the maritime sector, with both countries agreeing to expand defense exchanges, disaster management cooperation and industrial collaboration. The two leaders also reaffirmed their commitment to strengthening the Indonesia comprehensive strategic partnership. During talks in Jakarta, the two leaders witnessed the signing of several MOUs covering defense, critical minerals, agriculture, steel, maritime cooperation, and emerging technologies. They agreed to set up a branch of IIM Bangalore in Jakarta. The two sides also agreed to strengthen collaboration in manufacturing, food security, and digital technology.
1: भारत और इंडोनेशिया के लिए गरीबी को परास्त करना और अपने नागरिकों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमने इंडोनेशिया के साथ अपनी मिड डे मील स्कीम और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के सॉल्यूशंस साझा किए हैं। अब हम इस सहयोग को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा रहे हैं। हमारा हेल्थ कोऑपरेशन दोनों देशों में क्वालिटी हेल्थ सर्विस सुनिश्चित करने में अहम योगदान देगा। आज हुए एग्रीमेंट से भारत की हाई क्वालिटी और किफायती दवाइयां इंडोनेशिया के नागरिकों को और सहजता से उपलब्ध होगी।
0: Mr. Modi expressed gratitude after being conferred Indonesia's highest civilian honor, Bintang Adipurna of the Republic of Indonesia. He dedicated the award to the people of India and described it as a reflection of the enduring historical and civilizational ties between India and Indonesia.
1: सबसे पहले मैं इस गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए अपने मित्र प्रेसिडेंट प्रभवो को उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आज उनके आत्मीयता भरे निमंत्रण पर इंडोनेशिया की यात्रा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज सुबह मुझे आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है।
0: Mr. Modi said the partnership is advancing across a wide range of sectors, including development, security, technology, culture and education. Expressing confidence in the future of bilateral ties, he said a new golden chapter in the India-Indonesia partnership begins today.
1: Hum development, security, technology, culture aur education har kshetra mein mahatvapurna kadam badha rahe hain. Mujhe vishwas hai आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा।
0: The Prime Minister said an agreement signed today will make India's high quality and affordable medicines more easily available to the people of Indonesia. He added that India will contribute to the capacity building of Indonesian doctors and healthcare professionals. Mr. Modi said both sides have reached an important understanding to strengthen supply chain resilience in critical minerals and steel. He added that companies from the two countries are beginning new partnerships in stainless steel and rare earth magnets. The Prime Minister said India's Unified Payments Interface, UPI, will soon be integrated with Indonesia's payment system, promoting both ease of doing business and ease of travel.
1: People-to-people ties हमारे संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति है। हमें बहुत खुशी है कि भारत की UPI इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने जा रही है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ ट्रैवल दोनों को ही बल मिलेगा।
0: Earlier, Prime Minister Modi received a ceremonial welcome at the Istana Merdeka, the presidential palace. Defense Minister Rajnath Singh also congratulated Prime Minister Narendra Modi on being conferred with Indonesia's highest

0: समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। दोनों नेताओं की उपस्थिति में आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच 2018 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी प्रगति के नए चरण में प्रवेश कर रही है।
1: 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बढ़ते आपसी विश्वास ने रक्षा, सुरक्षा और समुद्री क्षेत्र में सहयोग को मजबूत किया है और दोनों देश रक्षा, आपदा प्रबंधन तथा औद्योगिक क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं।
1: हमारे देशों के बीच बढ़ता विश्वास हमारी रक्षा, सुरक्षा और मैरिटाइम सहयोग को मजबूत कर रहा है। आज हमने डिफेंस एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई। अब हम दोनों देशों के कोस्ट गार्ड हिंद महासागर में मैरिटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। हमने ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट डेवलपमेंट और मैरिटाइम ट्रेड में आपसी सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय लिया है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हुए समझौते से भारत की उच्च गुणवत्ता वाली और सस्ती दवाएं इंडोनेशिया के लोगों के लिए अधिक आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI को जल्द ही इंडोनेशिया की भुगतान प्रणाली के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे व्यापार और यात्रा दोनों में आसानी होगी।
1: पीपल टू पीपल टाइज हमारे संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति है। हमें बहुत खुशी है कि भारत की UPI इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने जा रही है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ ट्रैवल दोनों को ही बल मिलेगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि वे कल योग्यकार्ता में राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ 1000 साल से अधिक पुराने प्रम्बानन मंदिर की संरक्षण परियोजना का शुभारंभ करेंगे। उन्होंने इसे भारत और इंडोनेशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताया। उन्होंने घोषणा की कि दोनों देश गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की इंडोनेशिया की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी को उत्साह के साथ मनाएंगे। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया।
1: मैं इस गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए प्रेसिडेंट प्राबोवो को उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और आज इंडोनेशिया की यात्रा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज सुबह मुझे आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर बधाई दी है।
2: रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि ये असाधारण सम्मान प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व, परिवर्तनकारी राजनीतिज्ञता और आपसी विश्वास, सम्मान और साझा प्रगति पर आधारित वैश्विक साझेदारियों को मजबूत करते हुए भारत के राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने की उनकी अटूट प्रतिबद्धता की एक सशक्त मान्यता है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि ये सम्मान सभी भारतीयों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि ये सम्मान भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करने और भारत आसियान संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी के निरंतर प्रयासों का प्रमाण है। शिक्षा मंत्री ने

0: सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये देश के लिए गर्व का क्षण है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये प्रतिष्ठित सम्मान भारत इंडोनेशिया साझेदारी को और मजबूत करता है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट डब्ल्यू

0: www.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गुजरात उच्च न्यायालय ने 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोटों के मामले में आज विशेष न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें 38 दोषियों को मौत की सजा और 11 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। न्यायमूर्ति AY कोगजे और न्यायमूर्ति समीर दवे की खंडपीठ ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ सभी अपीलें खारिज कर दी और मामले में आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के सदस्यों को दी गई सजा को बरकरार रखते हुए अपने फैसले को सही ठहराया। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में 70 मिनट के भीतर लगातार हुए 21 बम धमाकों में 56 लोग मारे गए थे और 200 अन्य घायल हुए थे। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में संदिग्ध धनराशि के हेरफेर और अनियमित वित्तीय लेनदेन के मामले में आज कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर छापेमारी की। निदेशालय की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि 150 करोड़ रुपए से अधिक की भारी धनराशि संदिग्ध उद्देश्यों के लिए विमानन और यात्रा कंपनियों के माध्यम से भेजी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 2026 डोरन कप टूर्नामेंट की ट्रॉफियों का अनावरण किया। राष्ट्रपति ने टूर्नामेंट में भाग लेने वाली सभी टीमों और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने उनसे खेल भावना का पालन करने और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके इस ऐतिहासिक प्रतियोगिता की प्रतिष्ठा को और बढ़ाने का आग्रह किया।
1: फुटबॉल विश्व के सबसे लोकप्रिय खेल में से एक है। ये खेल उत्कृष्टता, एकता और खेल भावना का एक अनुपम उदाहरण है। फुटबॉल लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। खेल भावना का महत्व केवल खेलों तक सीमित नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है जो हमें समानता, सहयोग और विपरीत परिस्थितियों में भी दृढ़ बने रहने की सीख देता है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत आज 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह अभियान दिल्ली के पर्यावरण को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। श्री शाह ने कहा कि रिज के लगभग 5000 हेक्टेयर क्षेत्र को अब औपचारिक रूप से वन भूमि घोषित कर दिया गया है।
2: 6300 हेक्टेयर हरित रिज दिल्ली का फेफड़ा बनकर दिल्ली के पर्यावरण की सुरक्षा करेगी। 1 करोड़ से अधिक देसी पौधे, 35 लाख से ज्यादा बड़े बड़े वृक्ष के पौधे और 65 लाख अन्य झाड़ियां, बांस और औषधीय रोपे लगाने का काम होगा।
0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि 14 किलोमीटर लंबी जोजीला सुरंग, जम्मू श्रीनगर कॉरिडोर पर 36 सुरंगें, केदारनाथ रोपवे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेहतर सड़क संपर्क जैसी प्रमुख परियोजनाएं कनेक्टिविटी को मजबूत कर रही हैं और देश के विकास को गति दे रही हैं। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय विकास के लिए ज्ञान, नवाचार और साक्ष्य आधारित नीति निर्माण के केंद्र के रूप में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को मजबूत करने के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। भुवनेश्वर में आज 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम ने जनजातीय विरासत को संरक्षित करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी ज्ञान को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ एकीकृत करने का आह्वान किया।
3: जनजाति समूह का सामूहिक विकास ये नरेंद्र मोदी सरकार का लक्ष्य है। इसके कारण बहुत सारे बंधन केंद्र और उसके साथ साथ बहुत सारे रिसर्च कार्यक्रम हम कर रहे हैं और उसका क्रम में आज TRI ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका देश भर का 29 जगह से आके यहाँ योगदान दिया है और उनका काम आगे बढ़ रहा है। मेरा ख्याल से ये बहुत बढ़िया मैसेज होगा, जनजाति के लिए लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में बढ़ती राजनीतिक उथल पुथल के बीच जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को चेतावनी देते हुए 48 घंटे का समय दिया है। कमेटी ने कहा है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। हजारों लोग कथित नाकाबंदी को समाप्त करने, संचार सेवाओं की बहाली, भोजन और दवाओं की निर्बाध आपूर्ति, गिरफ्तार नेताओं की

0: रिहाई और 38 सूत्री लिखित समझौते के कार्यान्वयन की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद रोधी अधिनियम के तहत जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद से प्रदर्शन और तेज हो गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अगले 3 दिनों में उत्तरी अरब सागर, गुजरात, हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान में और आगे बढ़ेगा। तटीय कर्नाटक, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, ओडिशा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी मध्यम से तेज वर्षा की संभावना है। महाराष्ट्र में मौसम विभाग ने कई जिलों, विशेष रूप से पालघर, ठाणे और पुणे तथा नाशिक में बारिश के लिए चेतावनी जारी की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पुणे जिले के घाट क्षेत्र, लोनावला, माहौल, तामिनी और भोर में लगातार तेज बारिश जारी है, जिससे नदियों और नाले उफान पर है। भूस्खलन और अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने पर्यटकों से झरनों और पहाड़ों इलाकों में जाने से बचने की अपील की है। इस बीच मुंबई और पुणे के बीच सड़क संपर्क बहाल कर दिया गया है। नासिक के घाट क्षेत्र, जिनमें इगतपुरी और त्र्यंबकेश्वर शामिल है, में भी अत्यधिक भारी बारिश दर्ज की गई है। मुंबई महानगर क्षेत्र में बारिश की तीव्रता में कुछ कमी आई है, हालांकि ठाणे और पालघर जिले के कुछ हिस्सों में अब भी भारी बारिश जारी है। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: उधर गुजरात में भी कई जगहों, खासकर सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात क्षेत्र में लगातार हो रही तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में बेल्जियम ने अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मुकाबले में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र के दौरान सपाट कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 46 अंक बढ़कर 78,331 पर, जबकि निफ्टी भी लगभग 10 अंक बढ़कर 24,440 पर पहुंच गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण खनिजों, तकनीकी, कृषि और समुद्री सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में समझौतों, ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी को जकार्ता में इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित किया गया। गुजरात उच्च न्यायालय ने वर्ष 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में 38 दोषियों की मौत और 11 की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी कोलकाता অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছে সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গে 297.6 মিটার অর্থাৎ 1008 কিলোহার্টজ মিডিয়াম ওয়েভে। স্টুডিওর ঘড়িতে সময় 2:30 হয়ে 15 সেকেন্ড। এখন শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অনুষ্ঠানে শুনবেন খেয়াল, শিল্পী পণ্ডিত তুষার দত্ত, রাগ বৃন্দাবনী সারং, তবলা সঙ্গতে তাপস পাল এবং হারমোনিয়াম সঙ্গতে হিরণময় মিত্র। শুনবেন খেয়াল, রাগ বৃন্দাবনী সারঙ্গ।

0: আকাশবাণী কলকাতা, শুরু হচ্ছে দ্বিতীয় অধিবেশন সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গে। 297.6 মিটার অর্থাৎ 1008 কিলোহার্টজ মিডিয়াম ওয়েভে। স্টুডিওর ঘড়িতে সময় 4:59 হয়ে 47 সেকেন্ড। একটু পরেই শুনবেন সংবাদ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जकार्ता में इंडोनेशियाई संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी पर श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के पास विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाने के अपार अवसर हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया संयुक्त कार्य समूह तंत्र के माध्यम से आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।
2: आतंकवाद जैसे विषयों पर भारत और इंडोनेशिया दोनों की एक राय रही है। पिछले वर्ष पहलगाम में जब जघन्य आतंकवादी हमला हुआ, इंडोनेशिया तब भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा। मैं इसके लिए राष्ट्रपति प्रबोवो और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे दोनों देश काउंटर टेररिज्म पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप के माध्यम से साथ काम कर रहे हैं।
1: श्री मोदी ने एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की और क्षेत्र में नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के महत्व पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधारों में अब देरी नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि भारत उपग्रह प्रक्षेपण प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इंडोनेशिया को अपना समर्थन देने के लिए तैयार है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग अदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण के अंतर्गत 4 लाख से अधिक गारंटियां जारी की जा चुकी हैं और गारंटीकृत राशि 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। इस वर्ष मई में शुरू की गई इस योजना से सबसे अधिक लाभान्वित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME हुए हैं। उन्हें 98% गारंटियां प्रदान की गई हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांवों और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सरकार इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उपराष्ट्रपति भवन में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन को कपास उत्पादन मिशन की जानकारी दी। उपराष्ट्रपति ने भारत के कपास क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए मिशन की समग्र कार्ययोजना की सराहना की। श्री राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एकड़ कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए स्पष्ट और मापने योग्य लक्ष्य तैयार करने की आवश्यकता है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने झारखंड से 2 मीट्रिक टन आम्रपाली आम की व्यावसायिक निर्यात दुबई के लिए कराया है। वाणिज्य उद्योग मंत्रालय ने कहा कि यह निर्यात आदिवासी और महिला किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज केरलम के स्वास्थ्य मंत्री के मुरलीधरन के साथ एक वर्चुअल समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इसमें राज्य में प्रमुख स्वास्थ्य कार्यक्रमों और जन स्वास्थ्य पहलों के कार्यान्वयन और प्रगति की समीक्षा की गई। श्री नड्डा ने विभिन्न स्वास्थ्य पहलों को लागू करने में राज्य द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की और केरलम के स्वास्थ्य सेवा तंत्र को और मजबूत करने के लिए केंद्र से निरंतर समर्थन का आश्वासन दिया। केरलम के वायनाड जिले के कलाडी में आज वायनाड सुरंग सड़क परियोजना के निर्माण स्थल पर भूस्खलन होने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसे में 7 लोग घायल हुए हैं जबकि 7 अन्य लापता हैं। मुख्यमंत्री VD सतीशन ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने बताया कि बचाव कार्य के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य पुलिस तथा अग्निशमन एवं बचाव सेवा टीमें तैनात की गई हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज ईरान के उप प्रधानमंत्री खालिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 क्रिकेट मैच आज रात 10 बजे से नॉटिंगम में खेला जाएगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 0-1 से पीछे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi addressed a joint session of the Indonesian Parliament in Jakarta this afternoon. Highlighting the growing partnership between the two nations, Mr. Modi said, India and Indonesia have immense opportunities to deepen cooperation across a wide range of sectors. He noted that when India and Indonesia stand together, they reinforce the world's faith that democracy creates opportunities and builds trust. The Prime Minister said, history will be made when India's 140 crore people and Indonesia's 29 crore people move forward together in pursuit of shared progress.
2: आने वाले 25 वर्ष हम दोनों देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज मैं ये संकल्प लेकर आया हूँ कि भारत और इंडोनेशिया मिलकर पूरी मानवता को एक नई ऊर्जा से भर सकते हैं। जब भारत के 140 करोड़ नागरिक, इंडोनेशिया के 29 करोड़ नागरिक साझा प्रयासों से मिलकर आगे बढ़ेंगे तो दुनिया एक नया इतिहास रचते हुए देखेगी।
3: The Prime Minister said India and Indonesia are working closely to counter terrorism through the Joint Working Group mechanism. He reaffirmed India's commitment to a free, open and inclusive Indo-Pacific and stressed the importance of ensuring freedom of navigation in the region. Prime Minister Modi also expressed gratitude after being conferred Indonesia's highest civilian honor, Bintang Adipurna of the Republic of Indonesia.
2: मैं इंडोनेशिया के लोगों के इस स्नेह को हृदय से नम्रता से स्वीकार करता हूं। यह सम्मान हम दोनों देशों की डेमोक्रेटिक वैल्यूज का है, साझी विरासत का है और दोनों देशों के मजबूत होते रिश्तों का है। मैं आप सभी साथियों का, प्रेसिडेंट प्रबोवो जी का, इंडोनेशिया की सरकार और यहाँ की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।
3: Earlier, Prime Minister Modi held delegation-level talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta to review the full spectrum of bilateral ties and provide fresh momentum to the comprehensive strategic partnership between the two countries. The two leaders also witnessed the exchange of memoranda of understanding aimed at enhancing collaboration in areas of mutual interest. Both leaders also agreed to set up a branch of IIM Bangalore in Jakarta. In Kerala, one person was killed, 7 people were injured and 7 others are missing after a deadly mudslide struck the construction site of the Wayanad Tunnel Road project at Kallade near Meppadi in Wayanad district today. The Kerala State Disaster Management Authority said the collapse occurred when debris accumulated during excavation from the

आकाशवाणी कोलकाता का यह संचयिता चैनल है जिसे आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलो हर्ट्ज पर। इसे आप डिजिटल मोड के साथ साथ न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी सुन सकते हैं। वक्त तो चला है 5:22 और 1 सेकेंड। आप सुन रहे कार्यक्रम उर्वशी अपनी दोस्त प्रीति के साथ। उर्वशी कार्यक्रम में आज का सेगमेंट है एक ही फिल्म से, और आज हमने जिस फिल्म को चुना है वह फिल्म 1962 की उस कालजयी फिल्म को चुना है जिसने मनोरंजन के साथ साथ समाज को एक गहरा संदेश भी दिया। जी हाँ, यह फिल्म है अनपढ़। जब भी इस फिल्म का नाम लिया जाता है तो मन में मधुर संगीत, संवेदनशील अभिनय और एक ऐसी स्त्री की छवि उभर आती है जो परिस्थिति से हारती नहीं बल्कि जीवन की कठिन राहों पर चलकर स्वयं को पहचानती है। उस दौर में जब बेटियों की शिक्षा उतना महत्व नहीं रखता था, तब इस फिल्म ने एक साहसिक प्रश्न उठाया, क्या केवल धन दौलत ही किसी लड़की का भविष्य सुरक्षित कर सकती है या शिक्षा उसका सबसे बड़ा आभूषण है? और यही प्रश्न आज भी उतना ही प्रासंगिक है। कहती है कि यदि एक पुरुष शिक्षित होता है तो एक व्यक्ति शिक्षित होता है, लेकिन यदि एक महिला

निर्देशक हैं मोहन कुमार और संगीत सजाया है मदन मोहन, गीत में संगीत दिया है मदन मोहन ने और गीत के बोल लिखे हैं राजा मेहंदी अली खान ने और आवाज है लता मंगेशकर की, साथ में मोहम्मद रफी, आशा भोसले, महेंद्र कपूर।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल कार्यक्रम उर्वशी में एक ही फिल्म से में आज जिस फिल्म की बात हो रही है उस फिल्म का नाम है अनपढ़। कुछ गीत होते हैं ना जो समय की सीमाओं से परे चले जाते हैं, ऐसा ही एक गीत है आपकी नजरों ने समझा। वर्षों बाद भी इनकी लोकप्रियता वैसी ही बनी हुई है, लेकिन यदि इस गीत के पीछे छिपी कहानी को देखें तो महसूस होगा कि प्रेम तभी पूर्ण होता है जब उसमें सम्मान और विश्वास हो। यही सम्मान एक स्त्री को आगे बढ़ने का साहस देता है। किसी भी महिला की सबसे बड़ी शक्ति केवल उसका त्याग नहीं होता बल्कि उसका आत्मविश्वास है, और आत्मविश्वास की पहली सीढ़ी क्या है पता है? शिक्षा। आज देश की बेटियां विज्ञान, चिकित्सा, प्रशासन, सेना, खेल और अंतरिक्ष तक अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रही हैं। यह परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ शिक्षा की ही देन है। एक समय था जब घर की बेटियों को केवल घरेलू कार्यों तक ही सीमित समझा जाता था, लेकिन आज वही बेटियां परिवार की आर्थिक, सामाजिक और बौद्धिक शक्ति बन रही हैं। और यही संदेश अनपढ़ फिल्म में बहुत सहजता से देती है कि बेटी को संपत्ति नहीं शिक्षा का अधिकार दीजिए। चलिए सुनते हैं इसी गीत को।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल। कार्यक्रम उर्वशी में मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त प्रीति, और बात हो रही है फिल्म अनपढ़ की। कभी कभी एक फिल्म केवल मनोरंजन नहीं करती बल्कि समाज को सोचने पर भी विवश कर देती है। अनपढ़ फिल्म ऐसी ही एक फिल्म है। आप जब हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं तो याद आता है कि 6 दशक पहले भी यह फिल्म इसी संदेश को बड़े प्रभावशाली ढंग से सामने रख चुकी थी। कम लोग जानते हैं कि इस फिल्म की सफलता का सबसे बड़ा आधार इसकी कहानी से अधिक उसका भावनात्मक सत्य था। दर्शकों ने इसमें अपने ही परिवारों की झलक देखी। यही कारण है कि यह फिल्म आज भी प्रासंगिक लगती है। इस फिल्म में एक ऐसी नारी का चरित्र निभाया माला सिन्हा ने, जो परिस्थितियों की मार झेलती है, गलतियां करती है, लेकिन अंततः शिक्षा और आत्मविश्वास के महत्व को समझती है। उनका अभिनय इतना स्वाभाविक था कि दर्शक उनके साथ हंसते भी हैं और भावुक भी हो जाते हैं।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता का संचिता चैनल। बात हो रही है फिल्म अनपढ़ की। भारतीय सिनेमा का स्वर्णिम दौर केवल इसलिए स्वर्णिम नहीं कहलाता कि उसमें अच्छे गीत थे, बल्कि इसलिए कि उन गीतों में जीवन की संवेदनाएं, रिश्तों की गरिमा और समाज के मूल्य भी गूंजते थे। राखी की पावन बंधन, भाई बहन के स्नेह और पारिवारिक रिश्तों की मिठास को समर्पित यह गीत जो मैं सुनाने जा रही हूँ आज भी उतना ही भावुक कर देता है जितना पहले।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम उर्वशी अपनी दोस्त प्रीति के साथ और बात हो रही है फिल्म अनपढ़ की। एक अच्छी फिल्म की पहचान केवल उसकी सफलता से नहीं होती बल्कि इस बात से होती है कि वर्षों बाद भी उनका संदेश लोगों के मन में जीवित रहे। अनपढ़ ऐसी ही एक फिल्म है। यह फिल्म हमें यह नहीं कहती कि जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी बल्कि यह सिखाती है कि यदि शिक्षा आत्मविश्वास और संस्कार साथ हो तो कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना भी किया जा सकता है। एक बात बताऊं और कि उस दौर में सामाजिक विषयों पर बनने वाली फिल्मों में मनोरंजन और संदेश का जो संतुलन बनाए रखना आसान बात नहीं थी लेकिन अनपढ़ ने यह संतुलन बखूबी निभाया और यही कारण है कि इसके गीत संवाद और भावनाएं आज भी उतनी ही ताजा महसूस होती है।

वक्त हो चला है 5:51 और 28 सेकेंड। बात हो रही है फिल्म अनपढ़ की। किसी भी समाज का भविष्य उसकी बेटियों की आंखों में पलने वाले सपनों से तय होता है। यदि उन सपनों को शिक्षा का सहारा मिल जाए तो वही सपने देश को देश की सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। वैसे भी कहा गया है कि बेटी को विरासत में केवल आभूषण नहीं शिक्षा भी दीजिए, क्योंकि शिक्षा ऐसा धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। और आज के कार्यक्रम का अंतिम गीत आप सभी के लिए।

0: 2026. Shankar Maiti from Panithar Post Office, Khagragadia, District, West Midnapore, informs that Barnali Maiti, aged about 17 years, normal build, height 5 feet 2 inches, is missing since 4th of January 2026. And finally, Special Superintendent of Police Missing Persons Bureau, CID, Alipur, Kolkata 27, informs that Moushumi Chakraborty, aged about 26 years, medium build, height 4 feet 10 inches, color skin fair, mother tongue Bengali, is missing since 17th of November 2025 from Bishnupur, District, South 24, Paganas. Information regarding all the lost persons may be intimated to the officer in charge, Missing Persons Bureau, Criminal Investigation Department, Kolkata Police, Alipur, Kolkata 700027. And that is the end of the announcement regarding the lost persons. This is the Sanchaita channel of Akashvani, Kolkata. And now please stand by for the news to be relayed from Delhi.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, एआई और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत रामायण से लेकर बोरोबुदुर तक फैली हुई है।
2: इंडिया और इंडोनेशिया सिर्फ समुद्र ही शेयर नहीं करते, हमारी हिस्ट्री भी शेयर्ड है। हमारा संबंध रामायण और महाभारत की विरासत है। बोरोबुदुर और प्रभानंद जैसी अद्भुत स्मारकों के जरिए जुड़े हैं हम। इंडोनेशिया के राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ा से जुड़े हैं।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांव और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा है कि एरोड्रोम लाइसेंस मिलने के बाद भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उद्घाटन के लिए तैयार है। हवाई अड्डे का निरीक्षण करने के बाद श्री नायडू ने कहा कि यह परियोजना केंद्र सरकार, राज्य सरकार और GMR समूह के आपसी सहयोग से निर्धारित समय से पहले पूरी कर ली गई है। आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण के अंतर्गत 4 लाख से अधिक गारंटियां जारी की जा चुकी हैं और गारंटीकृत राशि 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। इस वर्ष मई में शुरू की गई इस योजना से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME सबसे अधिक लाभान्वित हुए हैं। वायनाड के मिपड़ी में कल्लाड़ी के पास सुरंग निर्माण

0: निर्माण स्थल पर तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई। जमीन के नीचे फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया और उन्हें मेपड़ी के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 6 अन्य अभी भी लापता हैं और उनके मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। अग्निशमन और आपदा राहत दल बचाव अभियान में लगे हुए हैं। इस बीच वायनाड और कोझिकोड जिले के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वायनाड के शिक्षण संस्थान कल बंद रहेंगे। जम्मू कश्मीर में मूसलाधार वर्षा के कारण आज सुबह डोडा जिले के थथरी क्षेत्र में एक बादल फट गया, जिससे कई घरों में दुकानों को नुकसान पहुंचा। हालांकि बादल फटने से कोई हताहत नहीं हुआ है। सीरिया की राजधानी दमिश्क में आज दोपहर 2 विस्फोट हुए। इनमें 4 पुलिसकर्मियों सहित 18 लोग घायल हो गए। ये विस्फोट फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुअल मैक्रों और सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शराकी राष्ट्रपति भवन में होने वाली बैठक से ठीक पहले हुए। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 क्रिकेट मैच आज रात 10 बजे से नॉटिंगहम में खेला जाएगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 0-1 से पीछे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi addressed a joint session of the Indonesian Parliament in Jakarta this afternoon. Highlighting the growing partnership between the two nations, Mr. Modi said India and Indonesia have immense opportunities to deepen cooperation across a wide range of sectors. He noted that when India and Indonesia stand together, they reinforce the world's faith that democracy creates opportunities and builds trust. The Prime Minister said history will be made when India's 140 crore people and Indonesia's 29 crore people move forward together in pursuit of shared progress.
2: आने वाले 25 वर्ष हम दोनों देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज मैं यह संकल्प लेकर आया हूं कि भारत और इंडोनेशिया मिलकर पूरी मानवता को एक नई ऊर्जा से भर सकते हैं। जब भारत के 140 करोड़ नागरिक, इंडोनेशिया के 29 करोड़ नागरिक साझा प्रयासों से मिलकर आगे बढ़ेंगे तो दुनिया एक नया इतिहास रचते हुए देखेगी।
1: Earlier, Prime Minister Modi held delegation-level talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta to review the full spectrum of bilateral ties and provide fresh momentum to the comprehensive strategic partnership between the two countries. The two leaders also witnessed the exchange of memoranda of understanding aimed at enhancing collaboration in areas of mutual interest. Speaking at a joint press conference with the Indonesian President, Prime Minister Modi said growing mutual trust has strengthened cooperation in defense, security and the maritime sector.
2: आज हमने डिफेंस एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई। अब हम दोनों देशों के कोस्ट गार्ड हिंद महासागर में मैरिटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। दो करीबी मैरिटाइम देश होने के नाते हमने ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट डेवलपमेंट और मैरिटाइम ट्रेड में आपसी सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय लिया है।
1: The two leaders agree to set up a branch of IIM Bangalore in Jakarta. Prime Minister Narendra Modi was today conferred Indonesia's highest civilian honor, the Bintang Adipurna, by Indonesian President Prabowo Subianto during a ceremonial event. Prime Minister Modi expressed gratitude for the award and dedicated it to the people of India and described it as a reflection of the enduring historical and civilizational ties between India and Indonesia.
2: मैं इस गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए अपने मित्र प्रेसिडेंट प्रभवो का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आज सुबह मुझे आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है।
1: In Kerala, 3 people were killed in a landslide at the tunnel construction site near Kalladi in Mepadi, Wayanad, Following heavy rainfall today, 9 workers who were trapped underground were rescued and shifted to the Government Medical College Hospital, Mepere. 6 others remain missing.

आकाशवाणी कोलकाता का यह संचेता चैनल है जिसे आप सुन रहे हैं। मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज़ पर। इसे आप डिजिटल मोड के साथ साथ न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी सुन सकते हैं। वक्त हो चला है 6:10 और 37 सेकेंड। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हिंदी वार्ता अपनी दोस्त प्रीति के साथ। हिंदी वार्ता में आज का वन विषय है वन महोत्सव। शहरों में हरियाली का महत्व।

वृक्ष, वृक्ष धरा का श्रृंगार है, जीवन का आधार है। वास्तव में यदि पृथ्वी पर वृक्ष न हो तो जीवन की कल्पना भी संभव नहीं है। वृक्ष हमें प्राण वायु देते हैं, वर्षा को आकर्षित करते हैं, मिट्टी का संरक्षण करते हैं, जल स्रोतों को बचाते हैं और असंख्य जीव जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं। वन महोत्सव भारत का एक महत्वपूर्ण वृक्षारोपण अभियान है। इसकी शुरुआत वर्ष 1950 में हुई थी। इसका उद्देश्य लोगों में वृक्ष लगाने और उनकी रक्षा करने के प्रति जागरूकता पैदा करना था। प्रत्येक वर्ष जुलाई के प्रथम सप्ताह में वन महोत्सव मनाया जाता है। वर्षा ऋतु में लगाए गए पौधों के जीवित रहने की संभावना अधिक होती है, इसीलिए यही समय वृक्षारोपण के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। आज वन महोत्सव केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि जन जन का अभियान बन चुका है।

आज तेजी से बढ़ते शहरीकरण ने शहरों का स्वरूप बदल दिया है। ऊंची ऊंची इमारतें, चौड़ी सड़कें, मॉल, औद्योगिक क्षेत्र तो बढ़ रहे हैं, लेकिन खुले मैदान और वृक्ष लगातार कम होते जा रहे हैं। इसका परिणाम हमारे सामने है, बढ़ता तापमान, प्रदूषित वायु, जल संकट, धूल और धुआं, घटती जैव विविधता, मानसिक तनाव। शहरों में रहने वाले लोग अक्सर कहते हैं कि गर्मी पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। इसका एक प्रमुख कारण हरियाली की कमी है।

ऑक्सीजन के बिना जीवित नहीं रह सकता। वृक्ष वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। वे धूल, धुएं और अनेक हानिकारक गैसों को अपने भीतर समाहित कर वातावरण को स्वच्छ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी कारण पार्क, सड़क किनारे लगे वृक्ष और हरित क्षेत्र शहरों के फेफड़े कहलाते हैं। आज हीट वेव यानी कि लू की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। जहां वृक्ष अधिक होते हैं वहां तापमान अपेक्षाकृत कम रहता है। वृक्ष अपनी छाया की प्रक्रिया से वातावरण को शीतल बनाए रखते हैं। यदि प्रत्येक कॉलोनी, विद्यालय, कार्यालय और सार्वजनिक स्थल पर पर्याप्त वृक्ष हो तो शहरों का तापमान कई डिग्री तक कम किया जा सकता है। वृक्ष वर्षा चक्र को संतुलित बनाए रखने में भी सहायक होते हैं। उनकी जड़ें वर्षा के जल को धरती में समाहित होने का अवसर देती हैं, जिससे भूजल स्तर बढ़ता है, साथ ही मिट्टी का कटाव भी कम होता है। आज जब अनेक शहर जल संकट से जूझ रहे हैं तो वृक्षारोपण जल संरक्षण का प्रभावी माध्यम बन सकता है।

एक वृक्ष केवल वृक्ष नहीं होता, वह पक्षियों का घर होता है, गिलहरियों का आश्रय होता है, तितलियों और मधुमक्खियों का भोजन स्थल होता है। यदि शहरों में वृक्ष नहीं होंगे तो अनेक पक्षी और छोटे जीव अपने प्राकृतिक आवास से वंचित हो जाएंगे। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि हरियाली के बीच समय बिताने से तनाव कम होता है, मन प्रसन्न रहता है और कार्य क्षमता बढ़ती है। इसी कारण आज विश्व के अनेक शहरों में ग्रीन पार्क, अर्बन फॉरेस्ट और ग्रीन कॉरिडोर विकसित किए जा रहे हैं। आज अधिकांश बच्चे मोबाइल कंप्यूटर की दुनिया में अधिक समय बिताते हैं। यदि विद्यालयों में सुंदर उद्यान और औषधीय पौधों के बगीचे और प्रकृति क्लब बनाए जाएं, तो बच्चों का प्रकृति से जुड़ाव बढ़ेगा और उनमें पर्यावरण संरक्षण की भावना विकसित होगी। वन महोत्सव केवल पौधे लगाने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि आवश्यक है कि लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल की जाए। इसके और साथ में हम ये भी कार्य कर सकते हैं कि प्रत्येक वर्ष कम से कम एक पौधे जरूर लगाएं, पौधों को नियमित पानी दें, वृक्षों की अनावश्यक कटाई रोकें, विद्यालयों और कॉलोनियों में वृक्षारोपण अभियान चलाएं, वर्षा जल संरक्षण अपनाएं, बच्चों को प्रकृति से जोड़ें। पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार का कार्य नहीं है। यदि प्रत्येक नागरिक एक पौधे को वृक्ष बनने तक सुरक्षित रखने का संकल्प ले, तो देश की हरियाली में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। हमें यह समझना होगा कि पेड़ लगाना जितना महत्वपूर्ण है, उनकी रक्षा करना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। भारतीय संस्कृति में वृक्षों को सदैव सम्मान दिया गया है। पीपल, बरगद, नीम, तुलसी, आम, अशोक जैसे वृक्ष केवल वनस्पति नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत का भी हिस्सा है। हमारे त्योहारों, लोकगीतों और साहित्य में भी प्रकृति के प्रति सम्मान की भावना दिखाई देती है। हम अपने बच्चों को धन संपत्ति तो दे सकते हैं, लेकिन यदि स्वच्छ वायु, शुद्ध जल और हरियाली नहीं छोड़ पाए तो हमारा विकास अधूरा माना जाएगा। आज लगाया गया एक छोटा सा पौधा आने वाले वर्षों में हजारों लोगों की छाया, ऑक्सीजन और जीवन देगा। कहा जाता है एक वृक्ष 100 सुख, और आज एक पौधा लगाइए, कल सुरक्षित

भविष्य पाइए। वन महोत्सव केवल एक सप्ताह का कार्यक्रम नहीं बल्कि जीवन भर निभाया जाने वाला संकल्प है। आइए हम सब मिलकर अपने शहर को अधिक हरा भरा, स्वच्छ और सुंदर बनाने का संकल्प लें। एक व्यक्ति एक पौधा लगाए, एक परिवार एक वृक्ष अपनाए और एक समाज मिलकर एक हरित भविष्य बनाए। इसी संदेश के साथ मैं कहूंगी हिंदी वार्ता यहीं तक। और हिंदी वार्ता में आज का विषय था वन महोत्सव, शहरों में हरियाली का महत्व।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः आदौ मुख्याः वार्ताः वैश्विक शान्ति स्थिरतायै भारत इण्डोनेशिया देशयोर रणनीतिक सन्धि सुदृढीकरणाय प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः आह्वानम् जकार्तायाम् इण्डोनेशिया संसदः संयुक्त सत्रं च सम्बोधितवान् भारत इण्डोनेशिया देशयोर मध्ये महत्वपूर्ण खनिज नवोन्मेषी प्रौद्योगिकी कृषि अथ सामुद्रिक सुरक्षा इत्यादिषु विविध विषयेषु प्रमुख सन्धिपत्राणि परस्परं विनिमयीकृतानि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जकार्ता नगरे इण्डोनेशिया देशस्य सर्वोच्च नागरिक सम्मानेन बिन्तङ्ग आदिपूर्ण इत्युपाधिना समलंकृतः केरलराज्यस्य वायनाड जनपदे एकस्मिन् सुरंग मार्ग निर्माण स्थले संजातेन दारुण पंकपातेन त्रयः जनाः पञ्चत्वे विलीनाः भारतीय ऋतु विज्ञान विभागस्य पूर्व सूचनानुगुणम् आगामिषु त्रिषु दिनेषु देशस्य विभिन्नेषु प्रान्तेषु विशेषतः गुजरात हरियाणा पंजाब अथ राजस्थानस्य च केषुचित् क्षेत्रेषु प्रावृत् स्थितिः सर्वथा अनुकूला वर्तते अपि च पुरुष क्रिकेट प्रतिस्पर्धायाम् अन्ताराष्ट्रिय श्रृङ्खलायाः द्वितीये तृतीये द्वन्द्वे भारतम् अद्य रात्रौ नॉटिंगम नगरस्य ट्रेंट ब्रिज इत्यस्य इंग्लैंड दलेन सह स्पर्धिष्यते अथ वार्ताः विस्तरेण प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना जकार्ता नगरे इण्डोनेशिया देशस्य राष्ट्रपतिना प्रबोवो सुबियान्तो इत्यनेन सह द्विपक्षीय सम्बन्धं सुदृढं कर्तुं सहैव द्वयोः देशयोः व्यापक रणनीतिक सन्धेः कृते नूतन ऊर्जां प्रदातुं प्रतिनिधिमण्डलस्तरीयं विचार विनिमयम् अकारि द्वयोः राजनेत्रोः समुपस्थितौ रक्षा महत्वपूर्ण खनिज कृषि सामुद्रिक सहयोग नवोन्मेषी प्रौद्योगिकी इत्यादिषु विविध क्षेत्रेषु अनेकानि सन्धिपत्राणि हस्ताक्षरितानि उभाभ्याम् नेतृभ्याम् जकार्ता नगरे भारतीय प्रबन्ध संस्थान बेंगलुरु इत्यस्य एकां नूतनां शाखां संस्थापयितुं सहमति च व्यक्तीकृता सम्भाषणावधौ उभाभ्याम् भारत इण्डोनेशिया व्यापक रणनीतिक सन्धि सुदृढीकरणाय स्वकीया प्रतिबद्धता पुनः संशोधिता जकार्तायाम् राष्ट्रपतिना प्रबोवो इत्यनेन सह संयुक्त वार्ताहर सम्मेलनं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री मोदी प्रावोचत् यत् परस्परं वर्धमानेन विश्वासेन रक्षा सुरक्षा तथा सामुद्रिक क्षेत्रेषु अस्मदीय पारस्परिक सहयोगः सुदृढः जातः
1: भारत और इंडोनेशिया के लिए गरीबी को परास्त करना और अपने नागरिकों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना सर्वोच्च प्राथमिकता है हमने इंडोनेशिया के साथ अपनी मिड डे मील स्कीम और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के सॉल्यूशंस साझा किए हैं अब हम इस सहयोग को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा रहे हैं
0: इंडोनेशिया देशस्य सर्वोच्च नागरिक सम्मानेन बितंग आदिपूर्ण इति उपाधिना अलंकृतः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अस्य गौरवपूर्ण क्षणस्य कृते इण्डोनेशिया सर्वकारं प्रति स्वकीयां गभीरां कार्तज्ञभावं प्राकटयत् तेन अयं

0: अपने मित्र प्रेसिडेंट प्रभवो को उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आज उनके आत्मीयता भरे निमंत्रण पर इंडोनेशिया की यात्रा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज सुबह मुझे आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है।
1: इतः प्राग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया देशस्य राष्ट्रपति प्रासादे इस्ताना मेर्देका इत्यत्र औपचारिक राजकीय सम्माननं प्राप्तवान्। अद्य अपराह्णे प्रधानमंत्री जकार्तायां इंडोनेशिया संसदः संयुक्त सत्रं च संबोधितवान्। प्रधानमंत्री सविशेषं न्यगादीत् यत् वैश्विक आतंकवादस्य प्रतिकाराय उभे अपि राष्ट्रे संयुक्त कार्यसमूह तंत्रस्य माध्यमेन अत्यंतं निकटतया कार्यं कुरुतः।
0: आतंकवाद जैसे विषयों पर भारत और इंडोनेशिया दोनों की एक राय रही है। पिछले वर्ष पहलगाम में जब जघन्य आतंकवादी हमला हुआ, इंडोनेशिया तब भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा। मैं इसके लिए राष्ट्रपति प्रभवो और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे दोनों देश काउंटर टेररिज्म पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप के माध्यम से साथ काम कर रहे हैं।
1: केरल राज्यस्य वायनाड जनपदे मेप्पाडी समीपस्थे कल्लाडी स्थानके अद्य वायनाड सुरंग मार्ग परियोजनायाः निर्माण स्थले संजातेन एकेन भीषणेन प्राणहारक पंकपातेन त्रयः जनाः मृत्युमुपगताः। वार्ताहरैः सह भाषमाणः मुख्यमंत्री वीडी सतीशनः इमां घटनाम् अत्यंतं कष्टप्रदां दुर्भाग्यस्पदां च अवर्णयत्। तेन आरोपः कृतः यत् जनपद आपद प्रबंधन प्राधिकरणस्य समाह्वानानां पश्चादपि अधिकारिभिः दत्तानां निरंतर निर्देशानां पालने गंभीरा उपेक्षा विहिता। तेन अग्रे ज्ञापितं यत् दुर्घटनास्थले सहायोद्धार कार्यार्थं राष्ट्रीय आपद उद्धार बलस्य दलानि राज्य आरक्षक बलम सहैव अग्निशमन उद्धार सेवा विभागः सद्यः नियोजिताः सन्ति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। अद्य राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः नवदिल्ल्याम् अस्य वर्षस्य डुरंट कप टूर्नामेंट इत्यस्य जयचिह्नानाम् अनावरणम् अकरोत्। सहैव ध्वजं प्रदर्श्य तान् प्रेषितवती। सभां संबोधयन्ती असौ अवदत् यत् अस्मिन् वर्षे नूतनानि दलानि डुरंट कप प्रेसिडेंट कप शिमला ट्रॉफी इत्येतेभ्यः जयचिह्नेभ्यः प्रतिस्पर्धां करिष्यन्ति। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः अद्य राष्ट्रीय राजधान्यां हरित क्षेत्रस्य संवर्धनाय एक पेड़ मां के नाम इत्यभियानम् अभिलक्ष्य दिल्ल्यां 70 लक्ष पादपानां वपनस्य कस्यचित् महाभियानस्य विधिवत् शुभारंभं विहितवान्। अस्मिन् मंगलावसरे संबोधयन् श्री शाहः प्रतिपादितवान् यत् अयं वपन संकल्पः दिल्ली पर्यावरणतंत्रस्य च आमूलं परिवर्तनाय कश्चन अत्यन्तं महत्वपूर्णः अभिनव प्रयासो वर्तते। केन्द्रीय जनजातीय कार्य मन्त्रालयेन जूएल ओरम इत्यनेन जनजातीय विकासाय ज्ञानस्य नवान्वेषणस्य साक्ष्याधारित नीति निर्माणस्य च यंत्ररूपेण जनजातीय अनुसंधान संस्थानां सुदृढीकरणाय नूतन दृष्टिः उद्घाटिता वर्तते। केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहानः अद्य 20,000+ कृषि उद्यमिनः 20,00,000 कृषकान् सशक्तीकर्तुं प्रगति परियोजनायाः शुभारंभम् अकरोत्। निर्वाचनायोगेन बिहार गुजरात मध्य प्रदेश राज्यानां त्रिविधानसभासनानां उपनिर्वाचनेभ्यः अधिसूचना प्रख्यापिता। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन उक्तं यत् आगामिषु त्रिषु दिनेषु नैरन्त्य प्रावृषे उत्तर अरब सागर गुजरात इत्येतयोः अन्येषु केषुचित् भागेषु तत्रैव हरियाणा पंजाब राजस्थान इत्येतेषां शेष

आकाशवाणी कोलकाता का यह संचेता चैनल है जिसे आप सुन रहे हैं। मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलो हर्ट्ज पर। इसे आप डिजिटल मोड के साथ साथ न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी सुन सकते हैं। वक्त तो चलाएं 6:23 और 26 सेकेंड। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुल गुलशन अपनी दोस्त प्रीति के साथ। गुल गुलशन कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनाएं जगजीत सिंह की आवाज में एक गजल।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता का संचिता चैनल कार्यक्रम गुल गुलशन में आप सुन रहे हैं अपनी दोस्त प्रीति को। वक्त हो चला है 6:52 और 46 सेकेंड। कार्यक्रम का आखिरी गीत हम आपको सुनवाते हैं मिताली सिंह की आवाज में और इसके साथ ही प्रीति को दीजिए आज्ञा 7:30 पर कार्यक्रम दर्पण में मुलाकात होगी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, एआई और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत रामायण से लेकर बोरोबुदूर तक फैली हुई है।
1: इंडिया और इंडोनेशिया सिर्फ समुद्र ही शेयर नहीं करते, हमारी हिस्ट्री भी शेयर्ड है। हमारा संबंध रामायण और महाभारत की विरासत है। बोरोबुदूर और प्रभानंद जैसी अद्भुत स्मारकों के जरिए जुड़े हैं हम। इंडोनेशिया के राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ा से जुड़े हैं।
0: प्रधानमंत्री इस समय जकार्ता में भारतीय समुदाय के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इसे अतुलनीय भारत की जीती जागती तस्वीर बताया है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदि पूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांवों और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा है कि एरोड्रोम लाइसेंस मिलने के बाद भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उद्घाटन के लिए अब तैयार है। हवाई अड्डे का निरीक्षण करने के बाद श्री नायडू ने कहा कि यह परियोजना केंद्र सरकार, राज्य सरकार और GMR समूह के आपसी सहयोग से निर्धारित समय से पहले ही पूरी कर ली गई है। आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण के अंतर्गत 4 लाख से ज्यादा गारंटियां जारी की जा चुकी हैं और गारंटीकृत राशि 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। इस साल मई में शुरू की गई इस योजना से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSE सबसे अधिक लाभान्वित हुए हैं। वायनाड के मेपड़ी में कल्लाड़ी के पास सुरंग निर्माण स्थल पर तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई है। जमीन के नीचे फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया।

0: किया गया है। इस बीच वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वायनाड के शिक्षण संस्थान कल बंद रहेंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 क्रिकेट मैच आज रात 10 बजे से नॉटिंघम में खेला जाएगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 0-1 से पीछे है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अटलांटा में आज मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का मुकाबला मिस्र से होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Prime Minister Narendra Modi addressed a joint session of the Indonesian Parliament in Jakarta this afternoon. Highlighting the growing partnership between the two nations, Mr. Modi said India and Indonesia have immense opportunities to deepen cooperation across a wide range of sectors. He noted that when India and Indonesia stand together, they reinforce the world's faith that democracy creates opportunities and builds trust. The Prime Minister said history will be made when India's 140 crore people and Indonesia's 29 crore people move forward together in pursuit of shared progress.
2: आने वाले 25 वर्ष हम दोनों देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज मैं ये संकल्प लेकर आया हूँ कि भारत और इंडोनेशिया मिलकर पूरी मानवता को एक नई ऊर्जा से भर सकते हैं। जब भारत के 140 करोड़ नागरिक, इंडोनेशिया के 29 करोड़ नागरिक साझा प्रयासों से मिलकर आगे बढ़ेंगे तो दुनिया एक नया इतिहास रचते हुए देखेगी।
1: Now we go over live to Jakarta, where Prime Minister is addressing the community program.
2: भारत की अर्थव्यवस्था ठप नहीं पड़ी। जब वेस्ट एशिया का इतना बड़ा संकट चल रहा था, तब भी भारत की इकोनॉमी थमी नहीं, बल्कि पिछले वर्ष का जो लास्ट क्वार्टर मार्च में खत्म होता है, तब हमारी ग्रोथ रेट 7.7% रही है। ये गति, ये प्रगति ऐसे ही नहीं आई है। भारत ने एक के बाद एक रिफॉर्म्स किए हैं, हमने लगातार परफॉर्म किया है और इसलिए आज देश ट्रांसफॉर्म हो रहा है।
1: Earlier, both leaders also held delegation-level talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta to review the full spectrum of bilateral ties and provide fresh momentum to the comprehensive strategic partnership between the two countries. And the two leaders also witnessed the exchange of memorandum of understanding MOUs aimed at enhancing collaboration in areas of mutual interest. The two leaders agreed to set up branch of IIM Bangalore in Jakarta. Prime Minister Narendra Modi was today conferred Indonesia's highest civilian honor, the Bintang Adipurna, by Indonesian President Prabowo Subianto during a ceremonial event. Prime Minister Modi expressed gratitude for the award and dedicated it to the people of India and described it as a reflection of the enduring historical and civilizational ties between India and Indonesia. In Keralam, three people were killed in a landslide at the tunnel construction site near Kaleri in Mepari, Wayanad, following heavy rainfall today. Nine workers who were trapped underground were rescued and shifted to the Government Medical College Hospital, Mepari. Six others remain missing and appear trapped beneath the debris. Rescue operations are continuing with teams from the fire and rescue services and disaster response agencies. Union Home Minister Amit Shah today launched a mission to plant 70 lakh saplings in Delhi under the Ek Ped Maa Ke Naam Abhiyan to increase green cover in the national capital. Speaking on the occasion, Mr. Shah said that this campaign is a significant initiative aimed at transforming Delhi's environment. Mr. Shah said that the central government and the Delhi government have resolved to fully develop 6,300 hectares of green rich area into

आकाशवाणी कोलकाता का यह संचयिता चैनल है जिसे आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज़ पर। इसे आप डिजिटल मोड के साथ साथ न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी सुन सकते हैं। वक्त हो चला है 7:31 और 8 सेकेंड। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दर्पण अपनी दोस्त प्रीति के साथ। दर्पण कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं एक नज़र। एक नज़र में आज हम स्मरण कर रहे हैं हिंदी साहित्य के ऐसे विलक्षण साहित्यकार का जिन्होंने बहुत कम लिखा लेकिन जो लिखा वह अमर हो गया। हम बात कर रहे हैं जिनकी जयंती प्रत्येक वर्ष 7 जुलाई को मनाई जाती है। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई 1883 को हुआ था। उनका परिवार हिमाचल प्रदेश के गुलेर क्षेत्र से संबंधित था इसलिए उन्होंने अपने नाम के साथ गुलेरी उपनाम जोड़ा। बचपन से उन्हें संस्कृत हिंदी और भारतीय संस्कृति का समृद्ध वातावरण मिला। आगे चलकर उन्होंने संस्कृत पाली प्राकृत अंग्रेजी और अनेक भाषाओं का गहन अध्ययन किया। वे साहित्यकार ही नहीं बल्कि इतिहासकार भाषाविद और अध्यापक भी थे। जब हिंदी कहानी के विकास की चर्चा होती है तब पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का नाम अत्यंत सम्मान से लिया जाता है। उन्होंने बहुत कम कहानियां लिखी किंतु उनकी प्रत्येक रचना अपनी मौलिकता और साहित्य गरिमा के कारण विशेष स्थान रखती है। उनकी तीन प्रमुख कहानियां हैं सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। इसमें उसने कहा था हिंदी साहित्य की अमर कृतियों में गिनी जाती है। अनेक विद्वान इसे आधुनिक हिंदी की पहली परिपक्व कहानी भी मानते हैं। यह कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। इसका नायक लहना सिंह बचपन में एक लड़की से सहज स्नेह करता है। वर्षों बाद परिस्थितियां बदल जाती है। युद्धभूमि में वही लड़की एक सैनिक की पत्नी के रूप में उसके सामने आती है और उसे अपने पति तथा पुत्र की रक्षा का अनुरोध करती है। लहना सिंह उस वचन को जीवन का धर्म मान लेता है और अपने प्राणों की परवाह किए बिना उसे निभाता है। अंततः अपने वह कर्तव्य वचन पालन के लिए सर्वोच्च बलिदान देता है। यही कारण था कि उसने कहा था केवल प्रेम कथा नहीं बल्कि त्याग कर्तव्य निष्ठा और मानवीय संवेदनाओं की अनुपम कहानी है। इसकी भाषा सरल है, संवाद स्वाभाविक है और पात्र अत्यंत जीवंत है। कहानी का भावनात्मक प्रभाव पाठक के मन पर गहरी छाप छोड़ता है। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लेखन शैली की सबसे बड़ी विशेषता थी सरलता, संवेदनशीलता और मौलिकता। उन्होंने भाषा को अनावश्यक अलंकरण से मुक्त रखते हुए उसे जीवन के निकट रखा। यही कारण है कि उनकी रचनाएं आज भी उतनी ही ताजगी का अनुभव करती हैं। वे मानते थे कि साहित्य केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं बल्कि समाज को दिशा देने का सशक्त साधन है। उनके लेखन में भारतीय संस्कृति, मानवीय मूल्य और गहरी सामाजिक चेतना स्पष्ट दिखाई देती है। आज के समय में जब जीवन की गति बहुत तेज हो गई है तब उसने कहा था जैसी कहानी हमें यह याद दिलाती है कि सच्चे रिश्ते विश्वास संवेदना और अपने वचन के सम्मान पर टिके होते हैं। यही मूल्य किसी भी सभ्य समाज की नींव है। नई पीढ़ी के लिए पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जीवन एक प्रेरणा है। वे बताते हैं कि महान साहित्य रचनाओं की संख्या से नहीं बल्कि उनके प्रभाव से पहचाना जाता है। उन्होंने कम लिखा लेकिन ऐसा लिखा जो हिंदी साहित्य की धरोहर बन गए। आज उनकी जन्म जयंती पर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके

साहित्य को पढ़ें, हिंदी भाषा का सम्मान करें और मानवीय मूल्यों को अपने जीवन में स्थान दें। अभी आप सुन रहे थे एक नजर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगले पायदान पर सुनते हैं फिर छिड़ी बात। इसके अंतर्गत हम आपको सुनाते हैं बेहतरीन नगमे। आइए सबसे पहले सुनाएं आनंद राज आनंद के संगीत में देव कोहली का लिखा हुआ गीत। आनंद राज आनंद और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में ये गीत, और इस गीत को हमने लिया है फिल्म वाह वाह राम जी से।

कार्यक्रम का आखिरी गीत हम सुनवाते हैं कुमार सानू की आवाज़ में फिल्म सर से इस गीत को, और इस गीत के साथ प्रीति को दीजिए आज्ञा। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल।

0: कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल बताया, कहा इससे आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के अभियान का शुभारंभ किया, कहा 6000 हेक्टेयर से अधिक हरित रिज क्षेत्र को वन क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। केरलम में वायनाड सुरंग निर्माण स्थल पर भूस्खलन से 3 लोगों की मौत और 6 लोग लापता, वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। मौसम विभाग का अगले 4 दिन में उत्तर और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान और नॉटिंघम में 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के तीसरे मैच में आज भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूँ। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एक तरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया।
1: आतंकवाद जैसे विषयों पर भारत और इंडोनेशिया दोनों की एक राय रही है। पिछले वर्ष पहलगाम में जब जघन्य आतंकवादी हमला हुआ, इंडोनेशिया तब भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा। मैं इसके लिए राष्ट्रपति प्रबोवो और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे दोनों देश काउंटर टेररिज्म पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप के माध्यम से साथ काम कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, एआई और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत रामायण से लेकर बोरोबुदुर तक फैली हुई है।
1: इंडिया और इंडोनेशिया सिर्फ समुद्र ही शेयर नहीं करते, हमारी हिस्ट्री भी शेयर्ड है। हमारा संबंध रामायण और महाभारत की विरासत है। बोरोबुदुर और प्रभानंद जैसी अद्भुत स्मारकों के जरिए जुड़े हैं हम। इंडोनेशिया के राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ा से जुड़े हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैश्विक विकास को गति देने में भारतीय अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इंडोनेशिया के जकार्ता में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत 1 अरब से अधिक लोगों के सपनों को साकार करने वाला राष्ट्र है और ऊर्जा तथा कनेक्टिविटी से लेकर सेमीकंडक्टर विनिर्माण तक कई क्षेत्रों में तेजी से प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ओर भारत की यात्रा न केवल इंडोनेशिया बल्कि पूरे आसियान क्षेत्र के लिए प्रेरक शक्ति बन रही है। उन्होंने कहा कि भारत और इंडोनेशिया विकास के लिए एक समान दृष्टिकोण साझा करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मात्र 20 रुपए प्रति माह से शुरू होने वाली किफायती बीमा योजनाओं जैसी पहलों ने वित्तीय समावेशन में क्रांति ला दी है। वहीं यूपीआई और एक्सप्रेसवे के तेज विस्तार ने भारत की अर्थव्यवस्था को रूपांतरित किया है और लाखों लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडोनेशिया द्वारा दिया गया सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा दोनों देशों के बीच घनिष्ठ मित्रता का प्रतीक है।
1: आज सुबह ही मुझे इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने का भी सौभाग्य मिला। ये 140 करोड़ भारतीयों का यश है। ये भारतीय समुदाय के आप

0: शहीदों का सम्मान है। और सबसे बड़ी बात, ये पुरस्कार इंडोनेशिया और भारत की घनिष्ठ मित्रता का एक और प्रतीक है।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी।
2: बेंगलुरु IIM वैश्विक स्तर पे ग्लोबल स्टैंडर्ड में QS रैंकिंग में 29th पोजीशन पे अभी है। एशिया की सूची में ये 5th नंबर पे है। इस प्रकार के एक महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा को, भारतीय शिक्षा प्रणाली को वैश्विकरण करने में, इंटरनेशनलाइज करने में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल है, जिससे देश को आर्थिक और पर्यावरणीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ मिले हैं। नई दिल्ली में विकसित भारत सम्मेलन में श्री गडकरी ने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक जैव ईंधनों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया।
3: श्री गडकरी ने कहा कि वैकल्पिक ईंधनों के अधिक उपयोग से प्रदूषण कम होगा, ईंधन आयात में कमी आएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, इससे किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि सरकार की प्रमुख परियोजनाएं देश में संपर्क व्यवस्था को मजबूत कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने जम्मू श्रीनगर मार्ग पर बन रही 36 सुरंगें, केदारनाथ रोडवे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेहतर सड़क संपर्क जैसी परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इनसे देश के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिल रही है। श्री गडकरी ने यह भी कहा कि राजनीति सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का माध्यम होना चाहिए। शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय राजधानी में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने अगले 4 वर्षों में 6,300 हेक्टेयर हरित रिज क्षेत्र को पूर्णतः वन भूमि में विकसित करने और इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है।
4: रिज के अंदर 70 से ज्यादा तालाब भी होंगे, छोटे छोटे रेस्टोरेंट भी होंगे और यहाँ पर जितनी भी हमारी आर्कियोलॉजी की संरचनाएं हैं उसको भी हम सुरक्षित करेंगे।
1: गृह मंत्री ने कहा कि सरकार यमुना नदी को साफ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि पिछले एक वर्ष में 129 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चालू हो गए हैं। गृह मंत्री ने 300 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया और 3 नवनिर्मित बस डिपो तथा 40 वाहन परीक्षण केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांव और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया।
5: प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण भारत की कृषि तेजी से बदल रही है। विकसित भारत के लिए विकसित कृषि, समृद्ध गांव, समृद्ध किसान, उसमें सरकार अपने सारे प्रयत्न कर रही है, लेकिन सरकार के साथ अगर बाकी संगठन भी जुड़ते हैं तो काम और तेजी से आगे बढ़ता है। और प्रगति कार्यक्रम के अंतर्गत ये तय किया है कि अभी तक 26,000 कृषि उद्यमी ट्रेंड करके, छोटे छोटे कृषि उद्यमी इन्होंने तैयार किए हैं जो एक गाँव में काम करते हैं और गाँव की कृषि को बदलने के लिए 100-200 किसान को साथ जोड़ते हैं।
1: आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण के अंतर्गत 4 लाख से अधिक गारंटियां जारी की जा चुकी हैं और गारंटीकृत राशि 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष मई में शुरू की गई इस योजना से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सबसे अधिक लाभान्वित हुए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह योजना पश्चिम एशिया की भू राजनीतिक स्थिति से प्रभावित व्यवसायों को तेजी से और बड़े पैमाने पर सहायता प्रदान कर रही है। मंत्रालय ने बताया कि योजना ऋण देने वाली संस्थाओं को उधारकर्ताओं को अतिरिक्त ऋण देने के लिए जोखिम कम करने हेतु बनाई गई है। इससे व्यवसायों

0: Manthan.
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से नागरिकों की सुलभ होती स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर के अध्यक्ष डॉक्टर एन के अरोड़ा, कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं श्रेया पाठक।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का विशेष कार्यक्रम मंथन। आज के इस अंक में हम चर्चा करेंगे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर एन के अरोड़ा, प्रेसिडेंट एम्स बिलासपुर। डॉक्टर अरोड़ा, आपका आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है।
3: धन्यवाद श्रेया जी आमंत्रित करने के लिए।
2: धन्यवाद सर। सर, मेरा पहला प्रश्न जो आपसे रहेगा वो ये रहेगा कि हमारे श्रोताओं को आप ये सरल शब्दों में बताइए कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन क्या है और इस

0: आवश्यकता हमें क्यों महसूस हुई?
1: तो ये डिजिटल मिशन के बारे में बात करने से पहले मैं अपने श्रोताओं से एक सवाल भी पूछना चाहता हूं और उसका जवाब भी मैं ही दूंगा। और वो सवाल ये है कि कोविड के दौरान जब कोविड का टीकाकरण हो रहा था तब हम सबको याद है कि किस तरीके से कोविन पर हम लोगों को अपॉइंटमेंट मिल जा रहा था, और साथ ही साथ जब पहला टीका लगता था तो उसका अब सर्टिफिकेट आ जाता था, दूसरा हो तो फिर सर्टिफिकेट दूसरे के लिए हमें याददाश्त हमें याद कराया जाता था, और दोनों टीके लगने के बाद हमें सर्टिफिकेट मिल जाता था कि हम पूर्णतः अब सुरक्षित हैं कोविड से। तो इस प्रकार ये कमाल और ये जो हमारा अनुभव रहा है उसका कारण डिजिटलाइजेशन था, और इसी डिजिटलाइजेशन को अब एवी डेम या आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संदर्भ में सोचूं तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तनकारी कदम है सरकार की तरफ से, जिससे हमें स्वास्थ्य सेवाएं सुविधापूर्वक मिल सकें, स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी जरूरतें हैं वो पूरी हो सकें, और इसमें दो चीजें और हैं, तो एक तो सुविधा बढ़ जाए लेकिन साथ ही साथ इसमें ट्रांसपेरेंसी यानी कि जो कुछ हो रहा है वो साफ ढंग से पता चलता रहे, ये इस एबीडेम का बहुत बड़ा उद्देश्य है। और जैसा कि श्रेया जी ने हमको बताया कि चाहे वो हम आयुष्मान भारत कार्ड की बात करते हैं, हम इंश्योरेंस की बात करते हैं सब जगह, और अभी आभा आईडी है, आभा आईडी के बारे में आगे चलकर हम बात करेंगे, ये किस तरीके से हमारी स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करता है, और जीवन के हर पहलू में ही नहीं लेकिन मेरे पूरे परिवार की स्वास्थ्य की जो जरूरतें हैं उनको पूरा करेगा बिना किसी परेशानी के।
0: तो डॉक्टर अरोड़ा, जैसे अभी आपने आभा हेल्थ आईडी की बात की तो उसी से जुड़ा मेरा अगला प्रश्न ये होगा कि इस मिशन का सबसे प्रमुख आधार अगर हम देखें तो आभा हेल्थ आईडी ही है, तो आम नागरिक के लिए यह कितनी उपयोगी है और इससे इलाज की जो प्रक्रिया है उसमें किस तरह आसानी लाई जा सकती है?
1: आभा आईडी का मतलब ये है कि जब भी हम कहीं हॉस्पिटल में जाते हैं या किसी हेल्थ फैसिलिटी में जाते हैं, बड़े अस्पताल में जाते हैं, तो हमें एक ओपीडी कार्ड मिलता है या हमें वहां का रजिस्ट्रेशन मिलता है, और हर जगह जैसे नई जगह जाते हैं तो हमें नया कार्ड मिलता है। आभा आईडी का मतलब यह है कि मेरे पास जो आभा आईडी है, मैं किसी भी अस्पताल में जाऊंगा, किसी भी स्वास्थ्य फैसिलिटी में जाऊंगा, तो मेरे को हर बार वही आभा आईडी मेरा रहेगा। इसके साथ साथ एक और भी फायदा ये है, जो सबसे बड़ा फायदा है, कि जो मेरे को अभी तक इलाज दिया गया है डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में, डिफरेंट फैसिलिटीज में, वो भी उसके अंदर एंटर्ड रहेगा, तो मेरे का एक तरीके से एक व्यक्ति का जो स्वास्थ्य संबंधी पूरा इतिहास है वो इकट्ठा एक जगह मिल जाता, मेरे को अपने साथ कागज ले जाने की जहमत नहीं उठानी पड़ेगी, उसके लिए परेशानी नहीं होगी, हम लोगों से कागज गुम हो जाते हैं, इसी तरीके से जो जांचें कराई होती हैं वो कभी समय पे मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं पता नहीं चलता कि कब कराई गई थी। लेकिन आभा आईडी का मुख्य उद्देश्य ये है कि सारा मेरा जो स्वास्थ्य संबंधी इतिहास है वो एक जगह इकट्ठा हो जाता रहता है, और दूसरा ये है कि मैं एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि मैंने आज दिल्ली में दिखाया और उसके बाद भोपाल जाना पड़ा और वहां पर अपना जांच करा रहा हूं, तो वो मेरा आभा आईडी एक तरीके से मेरे साथ साथ चलता है, और वहां पर आभा आईडी को देख करके वहां के डॉक्टर चिकित्सक जो स्वास्थ्यकर्मी है वो मेरा पूरा स्वास्थ्य का इतिहास देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के क्योंकि हर एक व्यक्ति का किसी भी बीमारी का होना और उसका उसका जो दवाई दी जाती है इलाज करा उसका प्रभाव पुराने स्वास्थ्य इतिहास पे भी निर्भर करता है, तो इस तरीके से मेरे साथ मेरा स्वास्थ्य का इतिहास, साथ में जो इलाज किया गया, जो जांच की गई थी, वो मेरे साथ साथ चलती है आभा आईडी के रूप में।
0: डॉक्टर अरोड़ा, तो अभी आपने जैसे बताया कि आभा हेल्थ आईडी से हम किस तरह से ये जो डिजिटल स्वास्थ्य यात्रा है ये काफी आसान हुई है, आप इसे भारत की डिजिटल स्वास्थ्य यात्रा में कितना महत्वपूर्ण पड़ाव समझते हैं?
1: ये तो आमूल परिवर्तन रहेगा। जिस तरीके से शुरू में जब आधार का नंबर दिया जा रहा था, आधार नंबर किया जा रहा था, लोगों के मन में संशय था, लोगों को पता नहीं चलता था, इसी तरीके से आभा आईडी जो है, हमारा हेल्थ आईडी जो है, ये एक आमूल परिवर्तन है कि जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड हमारे साथ साथ रहेगा हमेशा के लिए, और मेरे को बहुत ज्यादा अपने ध्यान नहीं रखने की जरूरत है। आप लोगों ने डिजी लॉकर के बारे

0: सुना है जिसमें हम अपने जरूरी कागजात संभाल
1: जी
0: के रखते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, ये उसी तरीके से जो हमारे स्वास्थ्य के जरूरी कागज हैं वो सारे मेरा एक तरीके से मेरे लिए लॉकर बन जाता है डिजिटल स्पेस में। मेरे को याद रहे ना रहे, डॉक्टर दूसरे के पास जब जाएंगे तो वो उसको देख सकता है कि पहले क्या हुआ। और इसमें एक खास बात यह है कि इसमें आपकी प्राइवेसी पूरी तरीके से मेंटेन रहती है। प्राइवेसी का मतलब यह है कि आपके अलावा उसको कोई नहीं जानता। अगर डॉक्टर भी देखना चाहता है आपके पुराने रिकॉर्ड को तो ओटीपी आपका, आपसे डॉक्टर कहेगा कि वो आपका रिकॉर्ड खोलना चाहेगा, आप आभा आईडी बताएंगे, आपका ओटीपी आएगा आपके टेलीफोन पे मोबाइल पे और तभी वो उनको देख सकेंगे। तो कुल मिलाकर के जो ये प्राइवेसी वाला जो कंपोनेंट है ये भी उतना ही इसके साथ बना रहता है। और ये और कुल मिलाकर ये मैं जो हम चाहते हैं कि जो मेरी बीमारी है, मेरी जो स्वास्थ्य संबंधी जो स्थिति है उसमें गोपनीयता बनी रहे, तो वो गोपनीयता भी बनी रहती है और वो किसी को जरूर कि दूसरे को पता चले ऐसा नहीं होता। इवन डॉक्टर भी अगर देखना चाहेगा तो वो आपके परमिशन के बिना उस रिकॉर्ड को नहीं देख सकता।
1: तो डॉक्टर अरोड़ा, जैसे कि अभी आपने गोपनीयता की बात की तो उसी से जुड़ा मेरा अगला प्रश्न ये होगा कि जैसे हम डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड और एआई के बढ़ते उपयोग के साथ लोगों के मन में जो डेटा सुरक्षा और गोपनीयता को लेकर काफी सवाल रहते हैं जिसकी अभी आपने चर्चा भी की, तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है ये इन चिंताओं का समाधान किस प्रकार करता है?
0: तो जैसे कि मैंने उदाहरण दिया कि आभा आईडी के थ्रू आपका रिकॉर्ड आपका डॉक्टर भी नहीं देख सकता, वो केवल आपका रिकॉर्ड है। और इसी तरीके से ये भी सुनिश्चित किया गया है कि ये रिकॉर्ड किसी भी तरीके से कोई और ना देख सके, तो गोपनीयता के लिए विशेष ध्यान रखा गया है। जिस तरीके से आधार के बारे में है तो आधार की भी गोपनीयता बनी हुई है, उसी तरीके से आभा आईडी की गोपनीयता भी पूर्ण तरह सुरक्षित की गई है। और उसमें कई लेयर्स हैं सुरक्षा के कारण, जिसको फायरबॉल्स कहते हैं कि उसको कोई देख ना सके। और कुल मिलाकर के ये जो मन में एक चिंता है एक आम व्यक्ति के मन में, तो मैं उसका पूर्णता उसको कहूंगा कि निराकरण करें उस चिंता से कि ये पूर्णता गोपनीय है, आपकी जो स्वास्थ्य संबंधी इंफॉर्मेशन है सूचना है वो किसी को भी नहीं पता चल सकती, अनलेस अगर आप खुद नहीं बताना चाहें तो।
1: जी, मेरा आपसे अगला प्रश्न होगा कि ये जो नई आरोग्य सेतु 2.0 ऐप है जिसमें हम स्वास्थ्य रिकॉर्ड हो या ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, बीमा जानकारी या फिर जो एआई आधारित स्वास्थ्य सेवाओं जैसी कई सुविधाएं जो इसमें जोड़ी गई हैं, तो आपको क्या लगता है कि यह जो प्लेटफॉर्म है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म कैसे बने जहां नागरिकों को लगभग सभी डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं एक ही जगह पे मिल सकती हैं, तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को अगर आप सरल शब्दों में बता सकें।
0: आरोग्य सेतु, फिर मैं आपको कोविड के दौरान ले जाऊंगा, आरोग्य सेतु 1.0 जो था वो कोविड के साथ बना था
1: जी।
0: और उसमें ये था कि अगर आपको कोविड के इलाज से संबंधित कुछ सूचना चाहिए, आपको अपने आसपास कितने मरीज हैं उनके बारे में पता करना है, आपके निकटतम स्वास्थ्य केंद्र कौन सा है जहां पर आपको इलाज मिल सकता है या जहां पर जांच की जा सकती है, वो उसमें था। तो आरोग्य सेतु 2.0 जो है वो उसका आगे विकास किया गया है कि अब मेरे को अपनी स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं उसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूं, सबसे नजदीकी कौन सी स्वास्थ्य सेवा है जहां पर मैं जा सकता हूं। एक उदाहरण के लिए, रात को मध्य रात्रि में कोई महिला प्रसव में जाती है, उसको डिलीवर मतलब पेन्स शुरू हो जाते हैं और उसको अब किस अस्पताल में ले जाऊं, तो ये आरोग्य सेतु से मेरे को पता चल सकेगा कि कहाँ कहाँ डिलीवरी की सर्विसेज उपलब्ध हैं। इसी तरीके से किसी को दिल संबंधी परेशानी है या जिगर संबंधी परेशानी है और वो चाहता है कि उसके सबसे नजदीक जो और विभिन्न प्रकार के जो ऑप्शंस हैं बीमारी को देखने के लिए वो कहाँ कहाँ उपलब्ध हैं वो करा जा सकता है। तो कुल मिलाकर के आपको ये समझ आएगा कि ये हम सब लोगों को जरूरत होती है इन सारी जरूरतों का, और खास तौर पर इमरजेंसी के दौरान ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मेरे को किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, मैंने आरोग्य सेतु खोल करके और जो मेरी स्वास्थ्य समस्या है वो उसमें डाली और कहा कि भाई मेरे को कहाँ जाना चाहिए, तो वो आपको एक गाइडेंस दिया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के जो एक जीवन में उसको और बेहतर बनाने के लिए, सुविधापूर्ण बनाने के लिए, क्योंकि समय के साथ जैसे

0: कि हमारे शहर बड़े हो रहे हैं और हर एक व्यक्ति को ये नहीं मालूम होता। अभी खाली वर्ड ऑफ माउथ से एक दूसरे से सुन करके हम चीजों को जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन आरोग्य सेतु जो है 2.0, ये यानी कि वास्तविकता धरातल पे क्या सिचुएशन है उसके आधार पर हमें गाइडेंस दे सकता है।
1: जी, और जैसा कि अभी हम देखते हैं कि स्कैन एंड शेयर की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी सुविधा है जिसके कारण अस्पतालों में ओपीडी पंजीकरण का इंतजार कुछ मिनटों तक सीमित हो गया है। क्या आपको लगता है कि ऐसी डिजिटल व्यवस्था मरीजों और अस्पताल दोनों के अनुभव को बेहतर बनाएगी?
0: हाँ, ये अब जो एक बहुत बड़ी जरूरत है कि सरकारी अस्पताल सरकारी दफ्तरों के हिसाब से चलते हैं और उसकी वजह से मरीज को, परिवार को काफी असुविधा झेलनी पड़ती है, जबकि बीमारी ना अपॉइंटमेंट लेकर के आती है और जब हमें जरूरत होती है तब हमें चिकित्सा और चिकित्सा कर्मी की जरूरत होती है। तो डिजिटलाइजेशन से और एक टेलीमेडिसिन के बेसिस पर हमें जिस समय 24 घंटे में जिस समय जो सुविधाओं की जरूरत है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। और खास तौर पे ये देखा गया है कि जो चिकित्सा संस्थान है, हेल्थ फैसिलिटीज हैं, वहां पर टेलीमेडिसिन की सर्विसेज अब काफी लंबे समय तक उपलब्ध होती हैं, जिससे कि हम उनसे बिना वहां पर व्यक्तिगत तौर पे जाए हुए हमें कंसल्टेशन मिल सकती है। इसके अलावा एक और भी फायदा है और वो ये है कि मैं किसी बड़े अस्पताल में, मेरा कोई इलाज चल रहा है, मेरी सर्जरी हुई है, अब उसको डॉक्टर के पास 2 महीने बाद या 1 महीने बाद या 3 महीने बाद दोबारा दिखाना है और डॉक्टर के पास मैं जाता हूं और 5 मिनट मेरे से पूछता है और वो कहता है अब मैंने बता 2 दिन खर्च करके गया हूं अस्पताल में। तो इस तरह से फॉलो अप के लिए भी जो टेलीमेडिसिन है या ये डिजिटलाइजेशन का सारा जो इकोसिस्टम है वो बहुत हेल्पफुल है, मेरे को जाने की जरूरत नहीं है। एक
1: जी
0: और चीज भी करी जा रही है कि अगर जरूरत पड़े तो जो मेरा स्थानीय डॉक्टर है उसके बारे में बताया जा सकता है कि भाई आप चले जाइए इनके पास, ये आपकी देखभाल उतनी अच्छी करेंगे जितने एक बड़े संस्थान में किया गया था। तो कुल मिलाकर ये डिजिटल इकोसिस्टम मेरे जीवन में एक उसको बेहतरी ला रहा है, उसमें सुविधाजनक बना रहा है और मेरी जो छोटी छोटी परेशानियां हैं उसको कम करने का प्रयास है।
1: जी तो जैसा डॉक्टर एनके अरोड़ा ने हमें बताया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के विभिन्न पहलू हैं, और इस चर्चा से यह स्पष्ट है कि डिजिटल तकनीक केवल सुविधाएं बढ़ाने का माध्यम नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ, तेज, सुरक्षित और पारदर्शी बनाने का प्रभावी साधन भी है। इसी संदेश के साथ ये कार्यक्रम मंथन के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर एनके अरोड़ा का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने हमें आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के विभिन्न पहलुओं पर बेहद सरल और महत्वपूर्ण जानकारी दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: श्रेया जी, धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से नागरिकों की सुलभ होती स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर के अध्यक्ष डॉक्टर एन के अरोड़ा। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी श्रेया पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: मंथन।

मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित किया, कहा भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थक, विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है। नाटो शिखर सम्मेलन तुर्की के अंकारा में शुरू, रक्षा खर्च और यूक्रेन की सैन्य आवश्यकताओं के लिए समर्थन पर चर्चा प्रमुख एजेंडे में शामिल। बलूच कार्यकर्ताओं ने जर्मनी में विरोध प्रदर्शन किया, बलूचिस्तान में मानवाधिकारों के बढ़ते हनन का आरोप लगाया। पुरुष क्रिकेट में नॉटिंघम में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच जारी, और फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 के मैच में अटलांटा में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का मुकाबला मिस्र से जारी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूँ। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास शांति स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया।
1: आतंकवाद जैसे विषयों पर भारत और इंडोनेशिया दोनों की एक राय रही है। पिछले वर्ष पहलगाम में जब जघन्य आतंकवादी हमला हुआ इंडोनेशिया तब भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा। मैं इसके लिए राष्ट्रपति प्रबोवो और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे दोनों देश काउंटर टेररिज्म पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप के माध्यम से साथ काम कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मात्र 20 रुपये प्रति माह से शुरू होने वाले किफायती बीमा योजनाओं जैसी पहलों ने वित्तीय समावेशन में क्रांति ला दी है। वहीं यूपीआई और एक्सप्रेसवे के तेज विस्तार ने भारत की अर्थव्यवस्था को रूपांतरित किया है और लाखों लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया है। इससे पहले इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की गहरी प्रशंसा करते हुए राष्ट्रपति सुबियांतो ने कहा कि वे भारत की विकास यात्रा और आर्थिक सफलता से प्रेरणा लेकर इंडोनेशिया के विकास को गति देना चाहते हैं।
2: ऑफ नरेंद्र मोदी जी,
3: मैं ये स्वीकार करना चाहता हूँ कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। मैंने उनकी नीतियों का अध्ययन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने उदारता पूर्वक मुझे उनकी नीतियों को अपनाने की अनुमति दी। इंडोनेशिया के लोगों को भारत के अनुभवों से सीखना चाहिए। हमारी सभ्यताएं और संस्कृति कई सौ वर्षों से भारतीय सभ्यता से बहुत अधिक प्रभावित रही है।
2: स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडियन सिविलाइजेशन।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज बहरीन के उप प्रधानमंत्री खालिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। जर्मनी के ब्रेमेन में बलूच नेशनल मूवमेंट ने बलूचिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने पाकिस्तान के अधिकारियों पर बलूच लोगों के खिलाफ अत्याचार करने का आरोप लगाया।
4: प्रदर्शनकारियों ने कहा कि बलूचिस्तान के लोगों को बड़े स्तर पर सामूहिक दंड का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बलूच एकजुटता समिति के नेताओं डॉक्टर मेहरंग बलूच, सिगबतुल्ला बीबो गुलजादी, बिबगर बलूच और सैयदा बीबी शरीफ की गिरफ्तारी का जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि मानवाधिकार से जुड़े मुद्दे उठाने के कारण इन कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए गए और न्यायिक प्रक्रिया में अनियमितताएं हुई। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि जबरन गायब किए जाने और हिरासत में मौत की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। उन्होंने पाकिस्तानी अधिकारियों पर लोगों के घरों को लाने और उन्हें विस्थापित करने का भी आरोप लगाया। बलूच नेशनल मूवमेंट का दावा है कि बलूचिस्तान के ग्वादर जिले के पनवान गांव और आसपास के क्षेत्रों में पिछले दो दिनों में छापेमारी की जा रही है। संगठन ने आरोप लगाया कि कई घरों को ध्वस्त किया गया और 60 से अधिक लोगों को कथित रूप से जबरन गायब किया गया। संगठन ने यह भी दावा किया कि जबरन गायब किए गए 5 लोगों की हिरासत में मृत्यु हुई और बाद में उनके शव बरामद हुए। बलूच नेशनल मूवमेंट ने पड़ोसी देशों, अंतर्राष्ट्रीय समुदायों और मानवाधिकार संगठनों से बलूचिस्तान की बिगड़ती स्थिति पर ध्यान देने और वहां के लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए कदम उठाने की अपील की है। विश्व दर्पण समाचार के लिए शक्ति सिंह।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। नाटो शिखर सम्मेलन 2026 आज तुर्की की राजधानी अंकारा में शुरू हुआ। इसमें गठबंधन के 32 सदस्य देशों, सहयोगी देशों और यूरोपीय संघ के नेता रक्षा, सुरक्षा और अंतर अटलांटिक सहयोग पर दो दिन की वार्ता के लिए एकत्रित हुए हैं। पहले दिन नाटो द्वारा रक्षा उत्पादन और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया गया। महासचिव मार्क रुटे ने कई नई बहुराष्ट्रीय पहलों की घोषणा की। इसमें नाटो उद्योगों को प्रवेश द्वार, नाटो विनिर्माण नेटवर्क, रक्षा महत्वपूर्ण कच्चे माल पर एक संयुक्त परियोजना और नाटो ड्रोन एज शामिल है। इसके अंतर्गत सहयोगी देश अगले 5 वर्षों में ड्रोन और ड्रोन रोधी क्षमताओं में $40 अरब से अधिक का निवेश करेंगे। ब्रिक्स देशों ने आज गुवाहाटी घोषणा को अपनाते हुए अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ आपसी सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ये घोषणा गुवाहाटी में आयोजित ब्रिक्स देशों की मादक पदार्थ निरोधक एजेंसियों के प्रमुखों की 2 दिवसीय बैठक के समापन पर स्वीकार की गई।
5: 2 दिवसीय बैठक के दौरान सदस्य देशों ने मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए सूचना, खुफिया जानकारियों और सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों के समयबद्ध आदान प्रदान को बढ़ावा देने तथा नवीन प्रौद्योगिकियों और डेटा आधारित उपयोगों के उपयोग पर सहमति व्यक्त की। सदस्य देशों ने नशीले पदार्थों की मांग में कमी लाने संबंधी विशेष पहलों को मजबूत करने, स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने और विशेष रूप से बच्चों तथा युवकों सहित संवेदनशील वर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया। इस बैठक में भारत की वर्ष 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्राजील, चीन, इथियोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस और संयुक्त राष्ट्र अमीरात के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में भारत ने इंग्लैंड के साथ तीसरे T20 क्रिकेट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 3 ओवर में बिना किसी नुकसान के 19 रन बना लिए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अटलांटा में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और मिस्र के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक मिस्र ने 1-0 की बढ़त बना ली है। एक अन्य मुकाबले में रात 1:30 बजे स्विट्जरलैंड और कोलंबिया आमने सामने होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित किया। कहा, भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थक, विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है। नाटो शिखर सम्मेलन तुर्की के अंकारा में शुरू। रक्षा खर्च और यूक्रेन की सैन्य आवश्यकताओं के लिए समर्थन पर चर्चा प्रमुख एजेंडे में शामिल। बलूच कार्यकर्ताओं ने जर्मनी में विरोध प्रदर्शन किया। बलूचिस्तान में मानवाधिकारों के बढ़ते हनन का आरोप लगाया। पुरुष क्रिकेट में नॉटिंघम में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच जारी। और फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 के मैच में अटलांटा में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का मुकाबला मिस्र से जारी। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अपराजिता नायर विद द वर्ल्ड न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi addresses Indonesian Parliament, says India stands for freedom of navigation in the Indo-Pacific and follows the path of development, not expansionism. NATO summit gets underway in Turkey's Ankara. Discussion on defense spending and support for Ukraine's military needs high on agenda. Baloch activists protest in Germany, allege worsening human rights abuses in Balochistan. In men's cricket, third T20 international underway between India and England in Nottingham. And in FIFA World Cup, defending champions Argentina face Egypt in round of 16 match in Atlanta. Prime Minister Narendra Modi today called for a stronger India-Indonesia strategic partnership, saying it will contribute not only to the prosperity of the two nations, but

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूँ। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोबो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान विंटांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज बहरीन के उप प्रधानमंत्री खालिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। कामराज पोर्ट 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला देश का दूसरा प्रमुख बंदरगाह बन गया है। बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने कहा कि उपलब्धि आधुनिक और भविष्य के लिए तैयार समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर है जो भारत की आर्थिक वृद्धि और वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देगा। श्री सोनोवाल ने कहा कि मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 के विजन से प्रेरित होकर देश विश्व स्तरीय बंदरगाह बना रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय राजधानी में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। श्री शाह ने कहा कि यह अभियान दिल्ली के पर्यावरण को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। गृहमंत्री ने कहा कि सरकार यमुना नदी को साफ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। गृहमंत्री ने 300 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया और 3 नवनिर्मित बस डिपो तथा 40 वाहन परीक्षण केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल है जिससे देश को आर्थिक और पर्यावरणीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ मिले हैं। नई दिल्ली में विकसित भारत सम्मेलन में श्री गडकरी ने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक जैव ईंधनों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। फीफा विश्व कप में अटलांटा में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और मिश्र के बीच राउंड ऑफ 16 का मैच चल रहा है। फिलहाल मिश्र 2-0 से आगे है। इसके बाद राउंड ऑफ 16 के एक और मुकाबले में वैंकूवर में स्विट्जरलैंड का सामना कोलंबिया से होगा। राउंड ऑफ 16 के एक और मुकाबले में बेल्जियम ने सिएटल में अमरीका को 4-1 से हराकर टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में भारत ने इंग्लैंड के साथ तीसरे T20 क्रिकेट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 12 ओवर में 3 विकेट पर 111 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए।

0: कभी तो हंसाए।
1: सुनलें हिंदी छायाछवि आनंद के मान्ना देर कंठे गानी आकाशवाणी कलकता सुनछेन हिंदी छायाछबिर गानेर अनुष्ठान। परवर्ती गानगुली सुनबेन आनंद आश्रम हिंदी छायाछबि थेके। प्रथम गानटी गेयेछेन किशोर कुमार।